FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 23, तदनुसार 14 जुलाई ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे बारी बारी से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे

असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरण और साथी। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन से।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।
1: एक बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो कन्हैया कहने

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में ये रचना। आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोता हूँ आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर। इसमें आज आप आनंद ले सकेंगे कुरमाली लोकगीतों का, कलाकार होंगे कैलाश चंद्र महतो और साथी। सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची का अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 से आकाशवाणी रांची का अन्य कार्यक्रम। शाम 4 मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम और शाम 5 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध किए गए फिल्मी गाने। शाम 5:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज की चर्चा का विषय होगा सर्दियों के लिए टमाटर की और बैगन की खेती। मनोरंजन कीजिएगा संथाली लोकगीत से राम टूडू और साथियों के स्वरों में। मौसम की जानकारी प्राप्त कीजिएगा, साथ ही भेंट वार्ता सुनिएगा। विषय होगा श्री विधि से धान की खेती। भेंट वार्ताकार होंगे अनूप कुमार हेम्ब्रम, उनसे बातें कर रहे होंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही आनंद लीजिएगा नागपुरी लोकगीत का रूना देवी और साथियों के स्वरों में। शाम 6 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। उसके बाद शाम 6:02 पर सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। शाम 6:30 पर आज के संथाली कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा लगड़े लोकगीत का ज्ञान टूटू और साथियों के स्वरों में। और श्रोताओं आज की भेंटवार्ता का विषय होगा श्री विधि द्वारा धान की खेती। भेंटवार्ताकार होंगी श्रीमती ललिता किस्कू और उनसे बातें कर रहे होंगे श्री बड़ा हांसदा। और आप दोंग लोकगीत का आनंद ले सकेंगे शंकर चंद्र।

मुहर साथियों के स्वरों में। शाम 7 बजे श्रोताओं प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद है 7:15 पर। श्रोताओं 8:00 सुनिएगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे 9:00। 9:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। हमारे केंद्र से 10:00 सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। श्रोताओं 11:00 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे 11:05 पर। और 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। जोहार चाईबासा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदय का प्यार भरा नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं आज का हमारे ही कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जो हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में श्रोताओं, ये था सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म ये वादा रहा का ये गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है संगम। जी हाँ, आवाज़ें हैं मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आराधना।

श्रोताओं, ये था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आराधना का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सुनैना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुनैना का गीत येसुदास की आवाज़ में। और अब पेश है अगला गीत मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: شوتا محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں ابھی آپ سن رہے تھے امر اکبر اینتھنی، اس فلم کا یہ گیت، اور ابھی سنتے ہیں یہ ضروری سندیش۔
1: ہنسا سے سنی راہیں نہ اپناؤ، بچوں کے بھوشیہ کو نئی دشا دکھاؤ۔
2: جھارکھنڈ پولیس نکسل مکت جھارکھنڈ کی دشا میں کرت سنکلپت ہے۔ نکسلواد سے مکت جھارکھنڈ ہیتو سرکشا بلوں دوارا سگھن نکسل ویرودھی ابھیان جاری ہے۔ اس سندربھ میں نہ صرف جھارکھنڈ پولیس بلکہ نکسلیوں کے پریوار جنوں کے دوارا بھی سکریہ نکسلیوں کو مکھیہ دھارا میں جڑنے کی اپیل کی گئی ہے۔
3: ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱚᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱ
4: झारखंड
2: सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम जोहार चायबासा में। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कभी अजनबी थे।

और अब आइए श्रोताओं बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत आज हमारा देश आज़ाद है। श्रोताओं, भारतीय सेना के हमारे वीर सैनिक हर वक्त देश की सेवा में लगे हुए हैं और हर प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्रोताओं, हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि देश के लिए देश के सैनिकों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और सदैव हमारे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और अब श्रोताओं, ये कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लीडर से ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एट द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: Across 10 of the 11 active missions.
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की

0: वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, SIT से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
2: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam has also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. We have more from a correspondent.
4: The fishing trawler FP Makali had left the Digha Shankarpur fishing harbour in Purva Medinipur on the 2nd of July with 15 fishermen on board. Contact with the vessel was lost after the 5th of July. A joint search operation by the Indian Coast Guard, the Navy and state agencies continued for several days. The capsized trawler was finally located on Saturday afternoon off the Kakdip coast in South 24 Parganas. 9 decomposed bodies were recovered from the cabin of the vessel, while 6 fishermen are still missing. Search operations are continuing in the surrounding waters. The bodies were brought to Kakdip and later shifted to the Katapukur morgue in South 24 Parganas. Since the bodies are in the decomposed condition, DNA identification is being carried out and blood samples have been collected from the family members of all 15 fishermen. West Bengal Fisheries Minister Rajesh Mahato has assured the bereaved families that the state government will provide all possible support. The bodies will be handed over to their respective families after DNA confirmation and completion of all legal formalities. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tags 2020.

0: बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन, एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए, कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की।
1: सभी पोलिंग स्टेशन में बीएलओ बीएलए 2 का सेकंड मीटिंग, साथ में चुनाव पाठशाला भी आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग में अभी वर्तमान में रोल में है उसका नाम में ये एसडीडी सूची बोला जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी, अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेट डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उनका भी नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगी, उसका बारे में चर्चा होगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चतरा, मझगांव, मनोहर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर पहुंच रहे बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में पूरा सहयोग दें। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों और मीडिया से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर रांची स्थित रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने स्मृति क्विज प्रतियोगिता और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों, संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉ. प्रिंस गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी के वर्तमान परिदृश्य, नई तकनीकों और करियर की संभावनाओं पर व्याख्यान दिए। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रियंका करकेट्टा ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और जटिल शल्य चिकित्सा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने आगामी राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुए ज्वेलर्स डकैती कांड में मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
2: डकैती की घटना हुई थी, उस कांड के मुख्य साजिशकर्ता शमशेर आलम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, दो मैगजीन, दो जिंदा गोली, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, इसी के साथ करीब 370 ग्राम सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ, 160 ग्राम चांदी जैसा दिखने वाले पदार्थ बरामद किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
0: रांची में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
3: डोरंडा थाना अंतर्गत साकेत नगर एरिया है, वहां से सबसे पहले मुकेश कुमार को पकड़ा और मुकेश कुमार के पोजीशन से उस ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली। उसके पश्चात आगे जब कंटिन्यूअसली रेड करेगी तो संदीप कुमार दांगी है, इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली है। तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा बरामद की गई है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए हैं। वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन नंबर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देखे जा सकते हैं। ओएमआर चुनौती सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने मॉनसून की कम बारिश में किसानों को खेती को लेकर सलाह दी है।
4: मॉनसून जो थोड़ा सा है वो बेरुखी भी दिखाएगा, बारिश भी होगा, तो स्थिति को देखते समझते हुए ही जैसा डायरेक्शन जाता आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से ही खेती करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से निपट पाएंगे। आपको प्रेफरेंस धान को ना देते हुए उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, अगर धान लगाना भी है तो आप निचले खेतों में उसको प्राथमिकता दें और ऊपर वाले खेतों में आप मकई है, तिलहन दलहन है, दाल है, इस टाइप का चीजें कर सकते हैं।
0: 22वीं रांची जिला सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2026 में विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और अकादमियों के 226 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सांडा और ताउली की 35 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है शिकंजा, 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी, 15 दिनों में यूनिवर्सिटी सेवा आयोग सक्रिय होगा। प्रभात खबर ने लिखा है भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतेह, आज मतदान केंद्रों पर सुनाई जाएगी एएसडीडी की सूची। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन, एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं। कुरमाली लोकगीतों का कलाकार है कैलाश चंद्र महतो और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे कैलाश चंद्र महतो और साथियों के स्वरों में कुर्माली लोक गीतों का।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और समय निकालकर आप हमारा कार्यक्रम जरूर सुन रहे होंगे। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि व्यायाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि व्यायाम क्यों या क्या कर सकती है। श्रोताओं, ये याद रखना ज़रूरी है कि हम खानाबदोश पूर्वजों से विकसित हुए हैं, जो अपना सारा समय खाने और रहने की जगह की तलाश में घूमते फिरते बिताते थे, रोज़ाना लंबी दूरी तय करते थे। हमारे शरीर लगातार सक्रिय रहने के लिए तैयार किए गए हैं और विकसित हुए हैं। श्रोताओं, समय के साथ अगर लोग पूरे दिन डेस्क पर या टीवी के सामने बैठे रहते हैं और व्यायाम कम करते हैं तो उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं। व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि है जो शारीरिक जो है फिटनेस और पूरी तरह से अच्छी है स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए या बनाए रखने के लिए किया जाता है। व्यायाम से इतनी तेज़ी समय वाली जो मेहनत होती है कि ताकत और स्वास्थ्य मिलती है या बनी रहती है। श्रोताओं, इंसान का शरीर एक मुश्किल और नाजुक मशीन की तरह है जिसमें कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं। किसी एक हिस्से में थोड़ी सी भी खराबी से मशीन खराब हो सकती है। इसी तरह अगर इंसान के शरीर में ऐसी कोई स्थिति आती है तो इससे शरीर भी खराब हो जाता है। एक्सरसाइज एक जो है स्वस्थ जीवन यापन या कह लीजिए लाइफ स्टाइल है जो अच्छे स्वास्थ्य और ज़िंदगी की गुणवत्ता में उसको बढ़ाने मदद करती है। श्रोताओं, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे मौत का खतरा कम कर सकते हैं। व्यायाम करने से सक्रिय लोग असक्रिय लोगों के मुकाबले अपनी उम्र 2 साल बढ़ा लेते हैं। लगातार यानी कि नियमित व्यायाम और अच्छी फिजिकल फिटनेस कई तरह से ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। फिजिकल फिटनेस और व्यायाम हमें अच्छा दिखने, अच्छा महसूस करने और ज़िंदगी का मज़ा लेने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा व्यायाम खाली समय बिताने का एक मज़ेदार जो है तरीका है। श्रोताओं, व्यायाम से इंसान को भावनात्मक जो है श्रोताओं बैलेंस बनाने में और अपनी एक अच्छी छवि बनाने में बनाए रखने में मदद मिलती है। जैसे जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं व्यायाम और भी ज़रूरी हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद दिल की खून पंप करने की क्षमता हर दशक में लगभग 8% की दर से कम हो जाती है। व्यायाम बच्चों के शरीर के पूरे विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम हमारे जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ाकर जो अतिरिक्त कैलोरी का इस्तेमाल करके उन्हें जो है श्रोताओं ख़त्म करके हमारे वज़न को भी ठीक बनाए रखने में

कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से मरने का ख़तरा भी काफ़ी कम हो जाता है और स्ट्रोक और कोलन कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। सभी उम्र के लोगों को एक्सरसाइज करने से फ़ायदा होता है। श्रोताओं, व्यायाम इंसान की मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में असरदार हो सकती है। ये इंसान के जो तनाव है उसको भी दूर करती है। श्रोताओं, जब हम काम या स्कूल से वापस आते हैं तो पूरे दिन के काम के बाद हम थका हुआ महसूस करते हैं। अगर हम कम से कम 30 मिनट के लिए चलें या फिर हल्की दौड़ करें, यानी कि जॉगिंग करें, तो इससे हमें खुशी और रिलैक्स यानी कि आराम महसूस होगा। कई अध्ययनों में पाया गया है श्रोताओं कि व्यायाम वाली जो जीवनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, उससे जो कुंठा और निराशा होती है उसको कम किया जा सकता है। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके डॉक्टर के पास जाने के चांस भी कम हो जाते हैं। शारीरिक गतिविधि के बिना शरीर की मांसपेशियां अपनी ताकत, स्टैमिना और ठीक से काम करने की क्षमता खो देती है। नियमित व्यायाम करने से शरीर के सभी हिस्सों को लगातार जो है वो सक्रिय रहते हैं और ये पूरी जो है स्वास्थ्य और हमारे फिटनेस को बेहतर बनाती है। साथ ही कई पुरानी बीमारियों का खतरा भी कम करती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में शारीरिक गतिविधि और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, व्यायाम इंसान, समाज, समुदाय और देश को जो है अमीर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर किसी देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो देश ज़िंदगी के हर पहलू में ज़रूर ऊंचाई को छुएगा। देश की स्वस्थ पीढ़ी अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है आगे बढ़ सकती है और इस तरह अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है। श्रोताओं, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसे पार कर लें और लगातार करीब 21 दिनों तक व्यायाम करें तो ये स्वस्थ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो श्रोताओं, हमें ज़रूर व्यायाम करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए और आज ही, यानी कि आप जब आप जितना जल्दी हो सके इसे आप शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के एक प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। श्रोताओं, देशबंधु गुप्त जी का जन्म आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को सन 1900 ईस्वी में पानीपत, हरियाणा के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला शादीलाल पक्के आर्य समाजी थे। उनके घर में वैदिक रीति रिवाजों का पूरी तरह से पालन होता था। इसका पूरा प्रभाव देशबंधु गुप्त जी के जीवन पर पड़ा। श्रोताओं, देशबंधु गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उन दिनों व्यवसायी लिखा पढ़ी में प्रचलित महाजनी लिपि में हुई। फिर वे नगर पालिका के स्कूल और अम्बाला के आर्य वैदिक हाई स्कूल में भर्ती हुए। देशबंधु गुप्त जी ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। ये उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। जब गुप्त जी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उसी अवधि में कई इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं घटी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में रोलेट एक्ट के विरोध में पहला व्यापक आंदोलन चला। जालियांवाला बाग में भीषण हत्याकांड हुए और भारत की प्रबुद्ध जनता ने एक स्वर में ब्रिटिश प्रिंस की भारत यात्रा का विरोध किया। विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्त राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।

0: लाला लाजपत राय गुप्त जी की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुए। ये उनकी प्रतिभा ही थी जिससे प्रभावित होकर लाला जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। देशबंधु गुप्त जी को आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता तथा देशभक्त स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ जेल में रहने का अवसर मिला। महात्मा गांधी जी के प्रेरक व्यक्तित्व से भी वे प्रभावित हुए। इस प्रकार उनके विचारों में प्राचीनता और आधुनिकता के संयुक्त दर्शन होते थे। देशबंधु गुप्त में संगठन की बड़ी क्षमता थी। ब्रिटिश के राजकुमार की भारत यात्रा के समय सरकारी अधिकारियों ने उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दलितों की एक सभा का आयोजन किया था। अपनी चतुरता से देशबंधु जी ने मंच पर कब्जा करके सभा को भंग कर दिया। तभी से उनकी गणना दिल्ली के प्रमुख जनों में होने लगी। इसके बाद जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन सब में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल की यातनाएं भी भोगी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वे गिरफ्तार हुए और फिर 1945 में ही जेल से जो है बाहर आ सके। श्रोताओं, पत्रकार के रूप में भी देशबंधु गुप्त जी प्रसिद्ध थे। उनकी पत्रकारिता का लाला लाजपत राय जी के साथ आरंभ हुआ। लाला लाजपत राय जी वंदे मातरम नामक पत्र के लिए बोलकर देशबंधु को लेख लिखवाया करते थे। तभी से उनकी भी इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी। वर्ष 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने राष्ट्रीय पत्र तेज का उन्हें संपादक बना दिया था। आगे चलकर पत्रकार जगत में उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई कि 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष चुन लिए गए। देशबंधु गुप्त जीवन भर राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। वे आर्य समाज के अनुयायी और सांप्रदायिकता की भावना से दूर थे। श्रोताओं, वे जाति प्रथा के प्रबल विरोधक थे। दुर्भाग्य से वर्ष 1951 में एक विमान दुर्घटना में देशबंधु गुप्त जी का देहांत हो गया। श्रोताओं, इसी तरह आज ही के दिन जन्म हुआ था गोपाल गणेश आगरकर जी का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के सहपाठी और सहयोगी गोपाल गणेश आगरकर जी का जन्म आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को सन 1956 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के तैमू नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने पुणे के दक्कन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने देश और समाज सेवा का व्रत ले लिया था। आगरकर जी लोकमान्य तिलक और उनके सहयोगी ये मानते थे कि शिक्षा प्रसार से ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनवरी 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। परंतु अपने विचारों के प्रचार के लिए गोपाल गणेश आगरकर जी के पास इतना पर्याप्त समय नहीं था। 2 जनवरी 1881 से उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा का और 4 जनवरी से मराठी साप्ताहिक केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। वर्ष 1894 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई और उसके दूसरे वर्ष फर्ग्यूसन कॉलेज अस्तित्व में आया। गोपाल गणेश आगरकर तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि इस कॉलेज के प्रोफेसर थे। श्रोताओं, साप्ताहिक पत्र केसरी के संपादन में भी गोपाल गणेश आगरकर लोकमान्य तिलक जी के निकट सहयोगी थे। परंतु बाल विवाह और विवाह की उम्र बढ़ाने के प्रश्न पर श्रोताओं काफ़ी मंत्रणा हुई। श्रोताओं, गणेश जो कि गोपाल गणेश आगरकर जी 1892 में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे और वे जीवन पर्यंत इसी पद पर रहे। आगरकर जी बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। वे विधवा विवाह के पक्षपाती थे। उनका कहना था, जय श्रोताओं, और 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा और सह शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था। तो श्रोताओं, अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे गोपाल गणेश आगरकर जी के बारे में, जो कि हमारे देश के एक प्रसिद्ध समाज सेवकों में से एक है। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है रमन विश्वनाथन जी की, जो कि जाने माने भारतीय चिकित्सा विज्ञानी थे। वे भारतीय चेस्ट फिजिशियन, मेडिकल माइकोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट थे, जिन्हें भारत में चेस्ट मेडिसिन का पिता माना जाता है। रमन विश्वनाथन का जन्म नागरकोइल तमिलनाडु में 8 सितंबर सन 1899 को हुआ था। वे वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के संस्थापक निदेशक थे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नवा नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो कहाँ बना है वो लोग का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गाँव बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरन सिंह तमसाए अनुता तमसाए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चला हो तमा दूर रन गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेकर ना लेंगे जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेकर ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत। भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
10: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ਸੈਨਾ ਸਵਯਮ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ
1: ਭਾਰਤੀਯ ਸੈਨਾ।
2: श्रोताओं, संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। और अब आइए बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। श्रोताओं, मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद इराक में हुआ था, जहाँ उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस के साथ एक अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। मध्य पूर्व में जन्मे मदन मोहन जी ने अपने जीवन के पहले 5 साल वहीं बिताए। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े थे और बॉम्बे टाकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो में साझेदार थे। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण मदन मोहन जी भी फिल्मों में काम कर बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया और देहरादून में नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उनका तबादला दिल्ली में हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन सेना की नौकरी में नहीं लगा और वे नौकरी छोड़ लखनऊ आ गए। लखनऊ में मदन मोहन आकाशवाणी के लिए काम करने लगे। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद फयाज खां, उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियों से हुई। इन हस्तियों से मुलाकात के बाद मदन मोहन काफ़ी प्रभावित हुए और उनका रुझान संगीत की ओर हो गया। अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी मुलाकात एस डी बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से हुई और वे उनके सहायक के तौर पर काम करने लगे। बतौर संगीतकार वर्ष 1950 में प्रसिद्ध फिल्म आँखें के जरिए मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। फिल्म आँखें के बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती पार्श्व गायिका बन गई और वे अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे। लता मंगेशकर भी मदन मोहन के संगीत निर्देशन से काफ़ी प्रभावित थी और उन्हें गज़लों का शहजादा कहकर संबोधित किया करती थी। श्रोताओं, मदन मोहन जी के पसंदीदा गीतकार के तौर पर राजा मेहदी अली खां, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिए मदन मोहन की धुनों पर कई गीत गाए। श्रोताओं, वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मदन मोहन जी ने अपने 2.5 दशक लंबे सिने कैरियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिल में खास जगह बना लेने वाले मदन मोहन जी 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से जुदा हो गए। उनकी मौत के बाद वर्ष 1975 में ही मदन मोहन जी की मौसम और लैला मजनू जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। तो श्रोताओं, अब चूंकि घड़ी की सुई कह रही है कि हमें जो है इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देना होगा, तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हीर रांझा के इस गीत से।

गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब आइए अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी, बालवीर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी बालवीर और साथियों की आवाज़ों में। और अभी सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म मेरा साया का ये गीत।

0: श्रोताओं, आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मेरा साया फिल्म का ये गीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रस रंजन में। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म मेम साहिब का ये गीत।

0: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की, खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: और अब श्रोताओं ये सुनते हैं गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मन्ना डे और असरानी की आवाज़ों में फिल्म बावर्ची का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

0: धन्यवाद सर।
1: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
0: यस मैम।
2: वाह, क्या बात है
3: मैम।
2: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी, पहाड़ी।
1: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
0: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
0: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
0: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
0: अच्छा, मैंने भी देखा है।
1: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
0: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
1: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
0: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
0: जी मैम।
3: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम

0: जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं। क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
6: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
5: जंगल के साथी।

0: दीमान, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं भाई, उसका कोई साथी नहीं भाई। उछलता रहता कभी कहीं भाई, उछलता रहता कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, अब मैं क्या करूं भाई।
0: चलते घूमते थके जो उसके पांव, चलते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर
1: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

हम आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अमृता
1: और मैं रेणु।
0: दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से
1: नमस्कार
0: जोहार। दोस्तों हम आपको देंगे अलग अलग क्षेत्रों की ढेरों जानकारियां और आपसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ।
1: जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे, खुद को निर्मल मानोगे तो निर्मल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो आप वास्तव में कमजोर बन जाएंगे, लेकिन यदि आप खुद को शक्तिशाली और साहसी मानेंगे तो आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे।
1: हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी हमारी अपनी सोच है। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, यदि मन में अजैव शक्ति का भाव है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो अमृता, अब आगे बढ़ते हैं और मौसम तो आज काफी बदलने वाला है, सुनने में आ रहा है, मौसम विभाग का
1: जी
0: अनुमान है।
1: जी बिल्कुल। और बारिश का इंतजार जो है हमारे रांची वाले कर रहे हैं,
0: हाँ
1: क्योंकि अभी कुछ दिनों से बारिश हुई नहीं है और गर्मी जो है बढ़ चुकी है।
0: हाँ और रांची को छोड़ो तो 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया
1: बिल्कुल
0: गया
1: बिल्कुल।
0: है।
1: साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बिहार व मणिपुर में सक्रिय रहने के कारण रांची में फिलहाल भारी बारिश के लिए 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहेबगंज जिले में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकते हैं। रांची में बुधवार और गुरुवार को बादल छाए रहने तथा एक दो बार मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
0: सच में, और ये भी कहा जा रहा है कि आज से 17 जुलाई तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
1: बिल्कुल।
0: और इस अवधि में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज हवा चलने की आशंका है। और वहीं झारखंड में 1 जून से 13 जुलाई तक झारखंड में 316.7 मिलीमीटर बारिश हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में इतना बारिश नहीं हो पाई जो सामान्य से बहुत कम है।
1: जी
0: और 1 माह के अब तक के आंकड़ों के अनुसार सिमडेगा में सबसे अधिक बारिश हो चुकी है और दूसरे स्थान पे रांची में है।
1: बिल्कुल। और
0: और
1: बारिश का इंतजार जो है हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेती करने के
0: हाँ,
1: लिए बारिश
0: सबका
1: की
0: जरूरत
1: आवश्यकता
0: है।
1: है। जी
0: और मौसम में यदि पर नजर डालें, तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस है। और बादल छाए रहेंगे, एक बार या दो बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आज हो सकती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अमृता, अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटी, किस आज क्या क्या आज के दिन हुआ।
2: बिल्कुल, आज के दिन आज क्या क्या खास हुई है तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन 1636 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था।
1: और 1789 में ईस्वी में बास्टिल के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसे निरंकुश राजशाही के अंत की ओर एक बड़ा कदम माना जाता है।
2: आज के दिन 1850 ईस्वी में मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया।
1: 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था।
2: आज के दिन 1965 ईस्वी में नासा के अंतरिक्षयान मरिफर 4 ने पहली बार मंगल ग्रह की क्लोजअप तस्वीरें ली, जो किसी दूसरे ग्रह की पहली अंतरिक्ष तस्वीर थी।
1: 2015 ईस्वी में नासा का न्यू होरो इंजिन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा, जो इतिहास का पहला प्लूटो फ्लाईवी था।
2: तो अब बातों के साथ अपने श्रोताओं को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इतिहास का अगला पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज के दिन किन महापुरुषों का जन्म हुआ।
1: हाँ, तो अपने श्रोताओं को बता दे कि आज के दिन सन 1902 में चंद्र भानुगुप्त, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था।
0: और 1909 ईस्वी में M.S.
1: नम्बूदरीपद, प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री, उनका भी जन्म हुआ था।
0: हाँ, और 1900 ईस्वी में देशबंधु गुप्त, प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था।
1: और 1856 में गोपाल गणेश अगरकर, जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका भी जन्म हुआ था।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज किन महापुरुषों का निधन हुआ, उन्हें करते हैं शतरत नमन।
2: जी, तो आज जो है 2008 ईस्वी में वाई.ई. चंद्रचूड़, जो कि भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका निधन हुआ था।
1: 2003 में लीला चिटनिस, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी, उनका निधन आज ही के दिन हुआ।
2: 1982 में रमन विश्वनाथन, जो कि जाने माने भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक थे, उनका भी निधन हुआ था आज ही के दिन।
1: और 1896 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे, साहित्यकार थे।
2: 1975 ईस्वी में मदन मोहन, जो कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध 1950, 1960 और 1970 के दशक के बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: मदन मोहन हिंदी सिनेमा के एक महान संगीतकार थे, गजलों और नजमों की रूहानी धुनों के लिए मशहूर इस संगीतकार ने वो चुप रहे तो लग जा गले और आपकी नजरों ने समझा जैसे अमर गीत दिए।
2: संगीत की दुनिया में आने से पहले मदन मोहन सेना में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर काम किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तो आइए सुनते हैं उनका ये खूबसूरत नगमा।

0: अमृता, ये चिलचिलाती धूप के बाद ना मानसून की बारिश भले ही राहत लेकर आती है, लेकिन इसी राहत के बीच ना कई संक्रामक बीमारियों का भी खतरा भी बढ़ जाता है।
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बारिश के दौरान जो है जमा पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका सबसे अधिक रहती है, और यही मच्छर कई बार जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में मच्छरों को पनपने से रोकना बेहद जरूरी है, तभी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव संभव है।
0: हाँ, तो हम कैसे उसे ये कर सकते हैं, जैसे मलेरिया फैलाने वाला जो है ना एनोफिलीज मच्छर जो है अक्सर गंदे पानी और ठहरे हुए पानी में अंडा देता है, इसलिए घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। यदि कहीं पानी जमा हो भी जाए तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल छिड़काव किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर पानी में मौजूद बैक्टीरिया, मच्छरों के अंडों और शुरुआती जो है लार्वा को नष्ट करने में मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सिर्फ गंदे पानी नहीं बल्कि साफ पानी में भी उसका जो लार्वा है वो पनपता है। डेंगू फैलाने वाला जो एडीज मच्छर बेहद वीआईपी होता है, यह साफ और रुके हुए पानी में ही पनपता है। यानी डेंगू का मच्छर नालियों के गंदे पानी में नहीं बल्कि घरों और आसपास जमा साफ पानी में विकसित होता है। ऐसे में कूलर, गमले, छत पर रखे कबाड़, फालतू जानवरों के पानी के बर्तन और फ्रिज में के पीछे लगी ट्रे में जो पानी आप जमा नहीं होने दें।
0: और एक मच्छर जो है ना कई बीमारियों का जड़ है, एक छोटा सा मच्छर कई गंभीर बीमारियों का वजह बन सकता है। एडीज मच्छर जो है डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाता है, जबकि एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का कारण बनता है। क्ल्यूलेक्स मच्छर जापानी इंसेफ्लेराइटिस जैसी बीमारियां फैला सकता है, और विशेषज्ञों के अनुसार कहना है कि मच्छरों की बढ़ती संख्या के पीछे घरों के आसपास जमा साफ या गंदा ठहरा पानी प्रमुख कारण है। अब पानी का जमाव रोकने के से बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम मलेरिया के जो प्रमुख लक्षण है उसको जानते हैं। जब आपको तेज बुखार के साथ ठंड लगे और कंपकपी हो, ठंड के साथ बार बार बुखार आए, सिर दर्द हो और शरीर में दर्द हो, कमजोरी और अत्यधिक थकान हो, और गंभीर स्थिति होने से बेहोशी और सांस लेने में भी तकलीफ होती है।
0: और ऐसा ही डेंगू के लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं अमृता, जैसे अचानक तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द, तेज सिर दर्द और अच्छे मतलब आंखों के पीछे दर्द हो जाता है, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द हो जाता है, त्वचा पर लाल चकते दिखाई दे

0: बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो इन्हें आप हटा दें या उल्टा करके रखें। घर के आसपास जो है गेंदे का पौधा, तुलसी, लेमन ग्रास या पुदीना लगाएं, इनकी खुशबू से मच्छर जो है वो दूर भागते हैं।
1: थोड़ा कुछ भी हुआ और सोते समय जो है हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, चाहे आप दिन में भी सो रहे हो या रात में। डेंगू के मच्छर अमूमन दिन के साथ समय ज्यादा सक्रिय होते हैं, और शाम के समय बच्चों को बाहर खेलने भेजते समय आस्तीन के कपड़े पहनाए, पूरा मतलब ढका हुआ हाथ का ढका हुआ कपड़ा पहना के भेजें ताकि मच्छर उनको ना काटें। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम सतर्क रह के बच सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जो बचाव हैं अगर वो हम करते हैं तो फिर मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों से हम दूर रह
1: दूर
0: पाते
1: रखते
0: हैं।
1: हैं, और थोड़ा भी कहीं भी कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: जी
1: आज 2 दिन 3 दिन आप देख लीजिए भी, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मिलने में नहीं सकुचाना चाहिए, और खान पान दुरुस्त रखें,
0: बिल्कुल,
1: पौष्टिक आहार लें।
0: हेल्दी खाएं, ज्यादा तला बोला ना
1: हाँ,
0: खाएं, और बाहर का खाना जो है अवॉइड करें।
1: और ये तो मौसम जो है इसमें सर्दी खांसी मतलब ये है क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा संक्रमित हो गया है अभी
0: हाँ
1: तो भाई, सर्दी खांसी के साथ हम लोग गाना भी सुनते चलें।
0: हाँ जी बिल्कुल।

0: देखो भाई, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, रोगों से
1: दूर
0: कम
1: रहेंगे।
0: दूर रहेंगे,
1: जी
0: तो हम लोग घूमने फिरने जा सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा घूमने का भी मन करेगा, है ना।
0: हाँ, तो आज कहाँ आप घुमाने ले जा रहे हो, कहाँ का
1: बिल्कुल
0: बताने वाले हो?
1: जी, तो हम अपने श्रोताओं को आज ले चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्ली जिले में स्थित मणिकर्ण।
0: अच्छा,
1: ऐसी जगह है जहाँ बार बार जाने का मन करेगा, और यहाँ का मुख्य आकर्षण है लगभग 5,800 फीट की ऊंचाई पर सदियों से बहती पार्वती नदी, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। हाँ, और
0: और जो है पहाड़ों पर फैली हरियाली, नीले आसमान तले घाटियों के बीच बहते पानी का आकर्षण कभी कम नहीं होगा। गाड़ियों और लोगों की भीड़ हो, थका देने वाला जाम हो, या क्या फर्क पड़ता है, असली चीज है घूमने का मजा। सच में ये मौसम जो है, गर्मी के मौसम में तो यहाँ बर्फ को देखना, उसे छूना, कहीं भी खड़े होकर फोटो खिंचवाना, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मणिकर्ण ऐसी ही जगह है जहाँ बार बार जाने का मन करता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ का मुख्य आकर्षण है लगभग 5,800 फीट की ऊंचाई पर सदियों से बहती पार्वती नदी, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। नदी का खिलंदर पानी बर्फ की मानिंद ठंडा, और इसी के पड़ोस में उबलते जल के स्रोत भी हैं जो नदी के साथ खेलते रहते हैं, और ठंडा और गर्म जल का कुदरती मिलन सभी को हैरान करता है। पानी में गंधक और अन्य रेडियोधर्मी तत्व मिले हुए हैं जो अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इस कारण भी यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं।
0: और मणिकर्ण में घुमक्कड़ी के दौरान सुंदर पेड़ पौधों के साथ साथ अनेकों रंगों की मिट्टी के सम्मिश्रण से रची लुभावनी पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य मानस पटल पर छप जाते हैं। कैमरा यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और पर्यटकों के कलात्मक प्रतिभा इस यात्रा को यादगार बनाने में उनके मित्र बन जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और जो मणिकर्ण अन्य दिलकश पर्यटक स्थलों का आधार स्थल भी है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ब्रह्म गंगा है, यहीं पार्वती नदी व ब्रह्म गंगा मिलती है। यहाँ जो है आपको
0: वो कुदरत का खुला दीदार हो, मतलब कर
1: देख
0: सकता
1: सकते
0: है।
1: हैं। हाँ
0: हाँ, सच में नारायणपुरी, राक्षट, बरसेनी और पुलगा जा
1: जा सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: पवित्र स्थल रुद्रनाथ लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, और मणिकर्ण से लगभग 25 किलोमीटर दूर अनुमानतः 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खीर गंगा भी गर्म जल स्रोत के लिए जानी जाती है, और यहाँ से पांडव पुल जो है 45 किलोमीटर की दूर पर स्थित है।
0: और इस क्षेत्र में जहाँ चाहे रुककर आप गाना का भरपूर आनंद ले सकते हैं, और मनोरम प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं।
1: तो
0: तो
1: बिल्कुल जो मौसम है हम
0: जब भी
1: अपने
0: मौका मिले, अपना प्रोग्राम बनाइए और गीत संगीत सुनते चलिए।
1: बिल्कुल

0: अमृता, चलते चलते चलते हैं खेल की दुनिया में। और
1: हाँ,
0: बता दें कि लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट इंग्लैंड हारा, भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतह।
1: जी, ये तो बहुत बड़ी खबर है। 142 साल लगे महिला टेस्ट आयोजित करने में, है ना?
0: हाँ, ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्राउंड पर 1884 में पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की पुरुष टीमों के बीच खेला गया था। यहाँ पहला महिला टेस्ट मैच होने में 142 साल लग गए, जो 10 जुलाई से खेला गया था।
1: हाँ, और जो 270 रन से हराया भारत ने, और रन के लिहाज से टेस्ट में भारत की दूसरी जीत है। इसके पहले इंग्लैंड को ही 347 रन से हराया था।
0: तो ये तो है भाई, भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए लॉर्ड्स पर आयोजित पहला महिला टेस्ट रिकॉर्ड 270 रन से जीत लिया है, और 757 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 186 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मेजबान टीम पर भारी पड़ी।
1: हाँ,
0: तीनों को देते हैं शाबाशियां, शुभकामनाएं, ऐसे ही उन लोग आगे बढ़ते रहें।

0: विनीता, अब तो हम लोग का समय भी होते समाप्त हो रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे में बस दोस्तों को सबको यही कहना चाहेंगे कि भाई मौसम को देखते हुए अपना स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए, खाते पीते अच्छे से घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, मतलब किसी चीज का गुंजाइश मत रखिए कि ये चीज नहीं कर पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन जो है एक बार मिलता है, तो अपने जीवन को भरपूर जिए और खुशी से जिए। अगर किसी प्रकार का आपको तनाव हो या किसी प्रकार का दुख हो तो उसे आप दूर करें, और जो जिसमें आपको खुशी मिलती है।
0: हाँ, किसी का गीले शिकवे लेकर बहुत आगे तक नहीं चलना चाहिए। जो है बस वहीं तक सुन ले और बस हो गया, ठीक है कहते हुए आगे बढ़ें। मन में दुराभाव नहीं रखें और इसी सब अच्छे विचारों के साथ इस कार्यक्रम से, जो हर रांची कार्यक्रम से रेणु
1: और अमृता को दे इजाजत। आप सभी को हमारी ओर से
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जोहार, जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक के, बोल लिखे हैं महबूब ने और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। और खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और परिवार के सभी लोग।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं SD बर्मन और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बॉम्बे सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमार निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन जी, चकरधरपुर गोलिया लोहार से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली, सिद्ध कुमारी, पूजा, अनु। तो आइए सुनते हैं इन सबों के फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। श्रीमती विमला देवी जैन, श्री हरक चंद्र जैन, स्टील ट्रेनिंग कॉरपोरेशन, सेवा सदन रोड, रांची, बिहार से। और इन सबों ने फरमाइश की है दोस्तों फिल्म लव स्टोरी की इस प्यारे से गीत की, जिसे गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों अगली फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय की, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। और ये सारे लोग सुनना चाहते हैं फिल्म नाम का ये प्यारा सा गीत पंकज उदास के स्वर में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मैनो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और मैं ज़ेविन। आज कार्यक्रम में आगे क्या है बताइए।
6: महीनों समय है अब आपको मेहमान से मिलवाने का, और बातचीत का विषय है बरसात में संक्रमण का खतरा और बचाव जरूरी है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आकाश अम्बास्था, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो

0: की शिल्पी सिन्हा।
1: बारिश की रिमझिम फुहारें जहां धरती को हरियाली की चादर उड़ा देती है, तो उसकी बूंदे हमें भी बचपन की कई यादें दिला देती है। गली मोहल्ले में कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना, उसे घंटों निहारना, जानबूझकर भीग जाना, छाता न होने का बहाना बनाना, फिर घर आकर सर्दी बुखार, बड़े बुजुर्गों की सलाह न मानने का नतीजा होता है। याद है ना सखियों, बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आती है। यानी यह मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही सतर्क रहने का इशारा भी करता है। जगह जगह जमा पानी, गंदगी, मच्छरों की संख्या इस मौसम में बढ़ जाती है और इसका नतीजा है कि वायरल बुखार तेजी से बढ़ने लगता है लोगों के बीच, यानी कि संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी सी सावधानी और साफ सफाई की आदत अगर हम अपनाएं तो इन बीमारियों से अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतें, किन किन उपायों को हम करें ताकि हम स्वस्थ रहें। और आज हमारे साथ इन्हीं सब विषय के लिए जुड़े हैं एक खास मेहमान, आप हैं डॉक्टर आकाश। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: सर। सबसे पहला सवाल है कि बरसात के मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी बीमारियां फैलती है?
2: जी एक्चुअली होता क्या है कि समर्स के बाद जब रेनी सीजन आता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत मिलता है हमें, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वेदर में अचानक से एक बदलाव आता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे ये चेंजेस आता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी जगह जगह पर जमने लगता है, जहाँ पर अच्छा ड्रेनेज ना हो, जहाँ पर अच्छा नुकसान निकास ना हो, मच्छर उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पनपने लगते हैं, कोई भी घर में रखी हुई चीज़ें जल्दी से ख़राब होने लगती हैं, हमारे बॉडी में कई तरह के बदलाव भी आते हैं, हमारा इम्यूनिटी तुरंत उसे अडाप्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण कुछ हमारे बीमारियां होती है जो बहुत कॉमन है रेनी सीजन में होना, जैसे कि डेंगू। हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि डेंगू फीवर बहुत ही आसानी से फैलने लगता है लोगों में, पहले एक केस, फिर दो केस, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते कई लोग आने लगते हैं, मलेरिया के केसेस आते हैं, चिकनगुनिया भी हो रहा है आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा। एक और बीमारी जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है वो लिप्टोस्पिरोसिस के नाम से जानी जाती है, टाइफाइड होता है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं, वाटर कंटामिनेशन होता है, हैज़ा होता है, वायरल फीवर होता है लोगों में, हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इन्फ्लुएंजा भी कॉमन होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जो कि वाटर के कंटामिनेशन से होती है, इसीलिए फीकल ओरल रूट से ये फैली जाती है, ये सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं।
1: सर आपने कही कि बहुत सारे मच्छर भी अभी हो जाते हैं, तो मच्छर से बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम मच्छर से काटने वाली बीमारी है उसे हम बच पाएं?
2: जी मच्छर से बचने का जो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो हम अपने घर पे तरीके कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग, जो बहुत बेसिक सी बात है, अगर हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो हम मच्छर से बच सकते हैं घर के अंदर। हम ऐसा करते हैं कि हमें समझ में आदत हो जाता है छोटे छोटे कपड़े पहनने का, स्लीवलेस पहनने का, शॉर्ट्स पहनने का, लेकिन हम क्या करें रेनी सीजन में थोड़ा फुल स्लीव्स पहने, शर्ट पहने, जीन्स पहने, जो पैर पैंट्स पहने जो पैंट को ढक सके। मच्छर भगाने का बहुत सारा ऐसा जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें DET ये सब होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। कहीं भी वाटर को जमने ना दे, मतलब वाटर स्टैग्नेशन ना होने दे, कोई भी बहता पानी कभी भी मच्छर का घर नहीं होता, लेकिन कोई भी जमा हुआ पानी वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कूलर में पानी को ना जमने दें, गमलों में, आपके घर में बालकनी में गमले रखे हुए होते हैं वो सब पे ना, टायर पे, गाड़ियों पे, ये सब पे पानी ना जमने दें। खिड़की और दरवाज़ों में जाली का प्रयोग ज़रूर करें, अगर आपके घर में ये नहीं है तो इसको आप ज़रूर से यूज़ करें, इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आप कमरे में स्प्रे कर सकते हैं रात को सोने से पहले, शाम के टाइम में मच्छर भगाने के जितने भी उपकरण आते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है वो है कि आप अपने दरवाजे खिड़की को शाम के पहले बंद कर ले, ताकि वो मच्छर आपके घर के अंदर ना आए।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सर, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि दूषित पानी और भोजन से होने वाली बीमारी जो होती है, उससे हम कैसे बचें? क्या उपाय करें ताकि मतलब इन बीमारी से हम बच पाएं?
2: जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जो खाना और पानी है उसको कभी भी ओपन ना रखें, उसको हमेशा ढक कर के रखें। अगर आपको बाद में थोड़ा खाना है, पर जो प्रायोरिटी चीज़ होती है वो होता है कि हमेशा रेनी सीजन में फ्रेश खाना खाएं, फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश खाना खाएं। गर्मियों के टाइम में ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फ्रिज का यूज़ करने लगते हैं कि कुछ भी खाना बचा चलो फ्रिज में डाल दो, उसको फिर नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रेनी सीजन में ना करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण वो खाना जल्दी से कंटामिनेट हो जाता है। इसीलिए आप फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश खाना खाएं, कुछ भी चीज़ को खुला ना छोड़े। खुला रखने से उसमें मच्छर या कोई भी तरह का कीड़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ जा सकता है जो कि आपको हानि कर सकता है। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस तरह से बनाया गया है, कैसा, कितने देर का है वो। ऐसा और उबला हुआ खाना या फिल्टर किया हुआ पानी ज़्यादातर खाएं, पिए। फिल्टर किया हुआ पानी ज़रूर पीना चाहिए और थोड़ा लाइट फूड खाना चाहिए इस टाइम हमें, ताकि वो हमारे पेट पे ऐसा हानि ना करे या जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आम लोगों में देखा जाता है आजकल कि स्ट्रीट फूड बहुत खाते हैं लोग। सर, बच्चों और बुजुर्गों को बरसात में किन विशेष सावधानियों की जरूरत होती है? क्योंकि इस मौसम में संक्रमण होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे।
2: जी, बहुत अच्छी सवाल आपने करी। एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उन बच्चों में ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है, और बूढ़ों में ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है एज के कारण। तो उनमें हम ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि उन्हें हम कोई ऐसी चीज़ें ना दें जिनके कारण उनको हानि हो सकता है। जैसे कि हमें ठंडा पानी पीने की आदत होती है समर्स के टाइम, तो वो धीरे धीरे उसको चेंज आप कर दे कि वो जैसे ही वो रेनी सीजन आ रहा है, बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल पानी दे, उबला हुआ पानी दे। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कोशिश करें कि आप फुल कपड़े पहना करके भेजें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस रेनी सीजन में, तो मच्छर के काटने से भी जो बीमारी होंगी वो तो होंगी। अगर मौसम अचानक से बदलाव आ गया, अगर कहीं पर तेज़ हवा चलने लगी, बारिश चलने लगी, तो उनकी वजह से उनको वायरल हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप घर में शाम के वक्त उनको काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा में आप अदरक, गुड़, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी, तुलसी पत्ता, ये सब खाने से उनका इम्यूनिटी और स्ट्रांग बनेगा और उनको बाहर जाने के टाइम उतना खतरा नहीं होगा। और बच्चों के लिए भी आप ये सब ख्याल रख सकते हैं कि बच्चों को फ्रेश चीज़ें दें, फ्रूट्स ज़्यादा खिलाएं इस सीज़न में, और वो जब भी बाहर जाए तो उनका खास ध्यान रखें कि वो ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पर, ज़्यादा गंदे पानी वाले जगह पर, ऐसा जगह पर ना खेलें।
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, आपने खान पान के बारे में तो बताया, लेकिन जानना हम चाहेंगे कि बारिश के जो मौसम में खान पान कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह का आहार लेना चाहिए, चाहे हमारे बड़े हों घर में या छोटे बच्चे। खान पान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: जी शिल्पी जी, ऐसा रेनी सीजन में करना चाहिए। मज़ा तो सबको आता है फ्राइड फूड खाने में, पकौड़िया खाने में, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ा कम खाएं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बंद कर सकते ये सब चीज़ें, हमारा इंडियन पैलेट ये सब चीज़ के लिए बहुत आदी हो रहता है। इसीलिए आप अगर खा भी रहे हैं पकौड़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें, तो कोशिश करिए उनको आप घर पे बनाएं, फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए रेनी सीजन में, क्योंकि हल्दी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी। अदरक अगर आपके घर में यूज़ होता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी खाना बनाए उसको, उसमें कोशिश करें कि जो तेज़ वाले मसाले होते हैं वो कम कम कर दे, और जो इम्यूनो प्रोटेक्टिव मसाले हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अदरक लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो तेज़ वाली चीज़ें उनका कम इस्तेमाल करें। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि स्टीम फूड खा सकते हैं तो आप स्टीम फूड भी ले सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, उसमें नमक काली मिर्च डाल करके खा सकते हैं। काली मिर्च बहुत ही अच्छा वो होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो खांसी में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और कोशिश करें कि रेनी सीजन में हमेशा ताज़ा खाना पकाएं, बिना फ्रिज में डाले खाएं और उनको जल्दी से इस्तेमाल कर लें।
1: सर, यदि किसी को बुखार या अन्य लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ये बताइए।
2: जी, ऐसा कहा जाता है हमारे मेडिसिन में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी कोई भी बीमारियां होने से पहले ही चेतावनी से उसको देख रहे हैं, उसको आप वो केयरफुल हैं, तो वो आपको नहीं होंगी। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि गले में खराश आना, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना आपका, या हेडेक होना, तो कोशिश करें कि पहले अपने जो घर के जो चीज़ें होती है इम्यून बूस्टर, उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जो होता क्या है, रेनी सीजन के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें वायरल होती हैं, तो बैक्टीरिया के ना होने से आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसीलिए उससे हॉस्पिटल जाना तभी अच्छा है, उससे पहले आप घर के जितने उपाय हो सकते हैं वो कर ले। आप घर में काढ़ा बना करके पी सकते हैं, आप रात को हल्दी दूध पी करके सो सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेना आपके कंजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप उबाले हुए आलमंड्स को खा सकते हैं, 10-12 आलमंड्स खा ले, हेडेक आपका कम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अगर आपको बुखार है तब आप स्ट्रॉन्ग काढ़ा बना करके पी सकते हैं, चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपको अच्छा राहत दे, ग्रीन टी में करने का मतलब है। और ये सारी चीजें आप घर में कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो 3 दिन 4 दिन के बाद भी वो लक्षण आपके अंदर हैं, वो रह रहे हैं, तो आप जरूर डॉक्टर को विजिट करें और अपने सिम्टम्स बताएं, और वो उस हिसाब से वो आपका इलाज करेगा। और मैक्सिमम बीमारियां जो इस टाइम में होती है वो 1 वीक के अंदर रिजॉल्व हो जाती है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जरूरी हॉस्पिटल जाए और अपना ट्रीटमेंट कराएं और सारे सिम्टम्स को ध्यान में रख करके काम करें।
1: सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बहुत अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी। उम्मीद है हमारी सखियाँ इसे सुन रही होंगी और अगर ऐसा करेंगी तो निश्चित है कि उन्हें लाभ होगा। और हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस बरसात में सतर्क रहेंगे, जैसा कि सर ने कहा, और उनकी बातों को बहनें अगर पालन करेंगी और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगी तो बरसाती बीमारियों से और संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।
2: जी, आपको भी थैंक यू।
0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, बरसात में संक्रमण का खतरा और बचाव जरूरी है। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर आकाश अम्बास्था, हमारी और जो हमारे मेहमान से बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी शिल्पी सिन्हा। तो बहनों, अब सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों, फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और आज हम आपको जानकारी के तहत बताएंगे कि बारिश के दिनों में त्वचा और बालों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। बरसात में नमी और प्रदूषण की वजह से बाल जो रुखे और त्वचा संबंधी बहुत सारी समस्या होती है, जिससे कि इन्फेक्शन और ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन के साथ साथ रूसी भी हो सकती है। तो आइए हम बालों और त्वचा के ये कुछ जो बातें जानकारी दे रहे हैं उनको ध्यान में रखें, ताकि आप इस बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से बच सकें।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि बहनों, की बारिश में आप बाल को गीला ना होने दें, क्योंकि ये भी कारण होता है ना कि जब बाल भीग जाते हैं तो ज्यादा टूटते हैं। और माइल्ड शैम्पू का आप उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: और त्वचा के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। बहनों, बरसात में डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है। शैम्पू के साथ साथ आप त्वचा का भी ध्यान रखें, बालों का भी ख्याल रखें।
1: बिल्कुल, तो और हमारी जो बहनें हैं ना, बाल को लेकर काफी सजग रहती हैं। हाँ। तो भाई सजग रहेंगी, और इसी के साथ अब हम भी सजग होते हैं अपने कार्यक्रम के प्रति। और बताते हैं कि आज प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी शिल्पी
0: और मह जमीन को दे इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मन का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। रचना समीर की है और धुन बनाई है संजीव दर्शन ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हम

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, रचना है हसरत जयपुरी की।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रचनाकार हैं आनंद बख्शी।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा है, हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जिबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा अदालत द्वारा आम आदमी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें 1 नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में 1 भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Park Indices traded lower today, tracking weak global markets after a sharp rebound in crude oil prices to $85 per barrel mark amid escalating tensions in West Asia. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बने उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर, मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन और रोजगार परक कोचिंग के लिए 15 दिनों के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूर्ण रूप से कार्यरत करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमति दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाईबासा और सारंडा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत लगभग 3,700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। श्री मरांडी ने कहा कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2: इस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है, वहाँ लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को विवश हो, लेकिन सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में डीएमएफटी 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनते।
1: झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार कल दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही कुलपति, कुल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित आवासीय विद्यालय में 4 छात्राओं के सांप काटने और 1 छात्रा की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की बूथ लेवल अधिकारी अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने क्षेत्र के सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ की सूची में भी शामिल हो गया है। चक्रधरपुर की बीएलओ विजय लक्ष्मी ने बताया कि एसआईआर कार्य में 100% लक्ष्य हासिल करने में सबका सहयोग मिला। वहीं अनीता देवी ने अन्य बीएलओ से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का आह्वान किया।
3: बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत मेहनत भी किया, लेकिन मेहनत करने में उतना ही आनंद भी आया। पूरे जनता का भी, पूरे वोटर का भी सपोर्ट रहा, उनके सहयोग से भी हम लोग 100% का हो पाया। अभी जिनके माता पिता का हो रहा है, आगे जिनके बच्चे के लिए फायदा होगा।
1: झारखंड पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सहयोग से रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में जिला पुलिस, एटीएस और अन्य

0: इकाइयों के 45 अधिकारी प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी प्रशिक्षण ए विजय लक्ष्मी ने किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दुमका में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में एक दिवसीय प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य शंकर हाजरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पंजीकरण प्रक्रिया, उद्योग में प्रशिक्षण के अवसर तथा रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने इसकी जानकारी दी।
1: इंदिरा नगर क्षेत्र, मुंबई इंदिरा नगर क्षेत्र में कुछ लोगों को ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक है भारती केबरतो, दूसरे हैं विशाल केबरतो और एक बालक है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसको नियुक्त किया गया है। दो लोग हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। इसमें टोटल 38 पुड़िया मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद किया गया।
0: सीआईएसएफ कोयला क्षेत्र करगली रांची के उप महानिरीक्षक सुमंत सिंह ने करकट्टा जंगल का दौरा कर अवैध कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन, कोयला तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने तथा ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक दोपहर के कारोबारी सत्र में नुकसान के साथ काम कर रहा था। सेंसेक्स 356 अंक लुढ़ककर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर हजारीबाग में 3 दिवसीय शिल्पोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। खासकर हजारीबाग की लोकप्रिय हजारों साल पुरानी सोहराय कला की झलक देखने को मिली। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि शहर में इन्हें एक बेहतर स्थान भी देना चाहिए ताकि सालों भर इन कलाकारों के उत्पाद बिक सकें।
2: टैलेंट को कमी नहीं, मार्केटिंग का उचित व्यवस्था अगर हो जाए, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना समरालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। झार क्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा।
0: और अब मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजया लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बनी उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं अनीता सेन।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत में होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की

0: सतह के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज डमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर पर ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ग़ारी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोग कर रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर चढ़ा एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
4: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
5: जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्म पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता होगा। 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए सुनते हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें हैं रूप कुमार राठौर की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

दोस्तों आइए सुनते हैं फिल्म परदेश का ये प्यारा सा गीत, हरिहरन और शंकर महादेवन, आदित्य नारायण, कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में, संगीत है नदीम श्रवण का, रचना आनंद बख्शी की है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल जलेगा गीत कुमार सानू और आदित्य नारायण के स्वर में। संगीत था अनु मलिक का और रचना जावेद अख्तर की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। रांची ट्रेजरी घोटाले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट देने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इस बयान को जांच प्रभावित करने वाला बताया है।
2: हजारों करोड़ का ट्रेजरी स्कैम हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों तक ये जो है जांच पहुंची है। और जो एसआईटी है उसमें उन अधिकारियों को रखा गया जिनके कार्यकाल में एसपी रहते हुए खुद घोटाले का आरोप लगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने इन ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट दे दिया। कार इनकी संलिप्तता नहीं है, यानी सरकार पहले से निष्कर्ष पर बैठी हुई है।
1: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी डॉक्टर सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है।
3: कि अगर आप नारी के इतने हितैषी है, इतने शुभचिंतक है, तो 2023 में ये पारित हो चुका था, इसको आप त्वरित लागू कर दे। आपकी मंशा साफ नहीं है, परिसीमन लागू करना चाह रहे हैं, इसमें बीजेपी अपना स्वार्थ देख रही है, परिसीमन ये अपने हिसाब से कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने इसे राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के कुड़ू में आवासीय स्कूल में सांप काटने से एक छात्रा की मौत और तीन के घायल होने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। घायल तीनों छात्राओं की स्थिति अब खतरे से बाहर है। फिल्मनिया उरांव का इलाज रांची स्थित रिम्स में जारी है, जबकि अनिशा और मनीषा का उपचार लोहरदगा सदर अस्पताल में किया गया। पलामू में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण तेजी से जारी है। अधिकांश प्रखंडों में 94 से 98% घरों तक प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। वितरण में डाल्टनगंज और डिजिटलीकरण में विश्रामपुर प्रखंड सबसे आगे है। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर प्रपत्र भरने की अपील की है। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अगले महीने से बोन मैरो की जांच पूरी तरह मुफ्त शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल यहां भेजे जा सकेंगे।
4: कोल्हान के मरीजों को अब बोन मैरो जांच के लिए निजी पैथोलॉजी लैब या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल में अगले महीने ये महत्वपूर्ण जांच सुविधा पूरी तरह से निशुल्क शुरू होने जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी सैंपल एकत्र कर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजे जाएंगे। वर्तमान में इस जांच के लिए मरीजों को 4,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार में तेजी आए। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
1: गुड्डक के अंतर्राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी देवगन मरांडी भारत नेपाल प्रतियोगिता जीतकर झारखंड लौट आए हैं। नेपाल के खिलाड़ी को हराकर देश का मान बढ़ाने वाले देवगन का उनके गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद इस बड़ी सफलता को हासिल कर उन्होंने युवाओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
0: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
0: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
0: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
0: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
0: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
0: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओ, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
0: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
2: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
3: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
6: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
7: मैम।
5: हाँ बेटी,
7: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
7: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
7: जी, पहाड़ी।
3: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
6: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
6: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
6: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
7: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली याने अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
8: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और

0: क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
2: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है। अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का यह अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं।

0: और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं और वो कहाँ जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जोश के पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जोश के पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा

0: नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था। दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अमृता। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जिंदा दिल के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है उदित नारायण के, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म खुदगर्ज से। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

दोस्तों उदित नारायण के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म वीर जारा से। रचना है जावेद अख्तर की और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टसन से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं कौशल मुनीर ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ASDD सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन

0: अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सघन पैदल गश्ती की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुस्लिम बस्ती और एस टाइप कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में दुकानदारों और आम जनता से संवाद किया। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है। रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। प्रस्तुति स्वर है विश्वजीत की। प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की है।
2: क्रीड़ा जगत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का साप्ताहिक खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खेल की दुनिया हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नई चुनौतियों की कहानी लिखती है। आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की खेल जगत की ऐसी बड़ी खबरें जिन पर पूरे खेल जगत की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय T20 क्रिकेट की। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। आखिर लगातार हार की वजह क्या रही? क्या ये सिर्फ खराब फॉर्म है या रणनीति में बदलाव की जरूरत? इस पर होगा तथ्यपूर्ण और संतुलित विश्लेषण। इसके बाद रुख करेंगे विंबलडन 2026 का, जहां महिला वर्ग को नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल पर भी रहेगी हमारी खास नजर। फिर बात होगी फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल की। विश्व फुटबॉल की चार महाशक्तियां फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने है। जानेंगे इन टीमों की रणनीति, ताकत, प्रमुख खिलाड़ियों और रोमांचक मुकाबलों की पूरी कहानी। और अंत में चर्चा होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में स्मृति मांदना की शानदार बल्लेबाजी और युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौर के दमदार प्रदर्शन ने भारतीय महिला क्रिकेट की नई ताकत का एहसास कराया। इस मुकाबले के साथ साथ आगे की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी होगी विशेष चर्चा। तो आइए खेल के इन सभी बड़ी खबरों, रोचक विश्लेषण और दिलचस्प तथ्यों के साथ शुरू करते हैं क्रीड़ा जगत। भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले कुछ सप्ताह किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। पहले आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला गंवाना और उसके बाद इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश, ये सब दो हार नहीं बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के सामने खड़े गंभीर सवालों की कहानी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाने वाली भारत लगातार लड़खड़ाती नजर आई? आइए तथ्यों और तर्कों के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात बल्लेबाजी की। भारतीय बल्लेबाज का दृष्टिकोण आधुनिक T20 क्रिकेट के अनुरूप नहीं दिखा। आज का T20 पहले 6 ओवर्स में मैच की दिशा तय कर देता है। इंग्लैंड जैसी टीम शुरू से आक्रमण खेलती है, जबकि भारतीय बल्लेबाज अक्सर शुरुआत में विकेट बचाने की सोच में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बीच के ओवर्स में रन गति बढ़ाने का दबाव आता है और विकेट लगातार गिरते हैं। दूसरी बड़ी समस्या रही मिडिल ऑर्डर्स की अस्थिरता। हर मैच में अलग अलग बल्लेबाजों से उम्मीद की गई, लेकिन कोई भी लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा सका। बड़े स्कोर का पीछा हो या सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना, टीम को ऐसा बल्लेबाज नहीं मिला जो अंत तक टिक कर मैच निकाल सके। अब बात गेंदबाजी की। भारत की गेंदबाजी में सबसे बड़ी कमी डेथ ओवर्स में दिखाई दी। अंतिम

चार पांच ओवर्स में लगातार रन लुटे। यॉर्कर की जगह फुल टॉस और स्लॉट गेंदें फेंकी गई, जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण रखा और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग भी चिंता का विषय रही, आसान कैच छूटे, रनआउट के मौके गंवाए गए और मैदान पर वो ऊर्जा नहीं दिखी जिसके लिए भारतीय टीम कभी जानी जाती थी। आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं बल्कि फील्डिंग भी मैच जिताती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों की खराब फॉर्म है? शायद नहीं, ये रणनीति का भी मामला है। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम लगातार प्रयोग कर रही है, कभी ओपनिंग जोड़ी बदल रही है, कभी मिडिल ऑर्डर्स, कभी गेंदबाजी संयोजन। प्रयोग जरूरी है लेकिन लगातार बदलाव खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी प्रभावित करते हैं। T20 क्रिकेट में खिलाड़ियों को स्पष्ट भूमिका चाहिए, किसे पावरप्ले में आक्रमण करना है, किसे पारी संभालनी है और किसे अंत तक मैच खत्म करना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। इंग्लैंड की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा, हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह जानता है और उसी के अनुसार खेलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिकता। भारत के कई खिलाड़ी IPL में बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वही खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा सतर्क नजर आते हैं। आधुनिक T20 क्रिकेट में डर कर खेलने की कोई जगह नहीं। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो फिर बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसका मतलब भारतीय क्रिकेट संकट में है? बिल्कुल नहीं, भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार है, मजबूत घरेलू ढांचा है और दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धा T20 लीग IPL भी है। जरूरत है सही खिलाड़ियों को लगातार मौके देने की, टीम में स्थिरता लाने की और खिलाड़ियों को बिना डर के खेलने की आजादी देने की। साथ ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं या हर श्रृंखला में नए प्रयोग कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ लंबे समय तक नहीं चल सकती। आने वाले महीनों में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। यदि अभी इन कमियों पर काम नहीं किया गया तो आगामी ICC टूर्नामेंट में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट का इतिहास बताता है कि यह टीम मुश्किल दौर से निकलना और मजबूत होकर लौटना जानती है, यही उम्मीद इस बार भी रहेगी। हार कभी कभी आईना भी होता है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली लगातार हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी है। अब ये टीम प्रबंधन, चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वे इस चेतावनी को समय रहते समझते हैं या नहीं। अगर सीख सही मिली तो यही हार भविष्य की बड़ी जीत की नींव भी बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में इन दिनों सारी निगाहें लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड क्लब पर टिकी है, जहां घास की कोर्ट पर खेला जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन संपन्न हुआ। महिला एकल वर्ग को इस साल एक नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी हमवतन कोरोलिना मुचोवा को रोमांचक मुकाबलों में 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं था बल्कि धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की मिसाल थी। पहला सेट पूरी तरह नोस्कोवा के नाम रहा। दूसरे सेट में वे कई बार चैंपियनशिप के बेहद करीब पहुंची लेकिन दबाव में लगातार मौके गवा बैठी और कोरोलिना मुचोवा ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को तीसरे सेट तक खींच दिया। लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में खुद को संभाल ले। तीसरे और निर्णायक सेट में नोस्कोवा ने बेहतरीन वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। दोनों खिलाड़ी एक ही देश चेक गणराज्य से थी, ऐसे में ये मुकाबला केवल खिताब का नहीं बल्कि चेक टेनिस की शानदार परंपरा का भी उत्सव बन गया। पिछले कुछ वर्षों में चेक महिला खिलाड़ियों ने विंबलडन में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और नोस्कोवा की जीत उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। महिला वर्ग में नया इतिहास रचने के बाद अब रुख करते हैं पुरुष एकल वर्ग की ओर। टेनिस की दुनिया में एक नया युग तेजी से आकार ले रहा है और इस युग का सबसे चमकता सितारा है इटली के 24 वर्षीय यानिक सीरन। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सीरन ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए विंबलडन 2026 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जर्मन

के अलेक्जेंडर जेवरेवे को चार सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन और अपने करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। यानिक सिरन की सबसे बड़ी

बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया और फाइनल में जेवरेवे के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी कर यह साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी दबाव में और मजबूत होकर उभरते हैं। 24 वर्ष की उम्र में 5 ग्रैंड स्लैम जीतकर यानिक सीरन ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में पुरुष टेनिस पर उनका दबदबा और मजबूत हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने उन्हें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बाद की पीढ़ी का सबसे बड़ा सितारा मान रहे हैं। संघर्ष, अनुशासन और निरंतरता, यही है यानिक सीरन की सफलता का मंत्र। 24 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर टेनिस खिलाड़ी देखता है। अब दुनिया की नजरें इस युवा चैंपियन पर है कि आने वाले वर्षों में और कितने इतिहास रचता है। अब जरा विंबलडन की उस खास परंपरा की बात कर लें जो इसे दुनिया की बाकी ग्रैंड स्लैम से अलग बनाती है। क्या आप जानते हैं विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। यहां आज भी खिलाड़ी सफेद रंग के ड्रेस पहनते हैं और यह नियम इतना सख्त है कि खिलाड़ियों के कपड़ों पर दूसरे रंग की मात्रा भी बेहद सीमित होती है। यही परंपरा विंबलडन की पहचान है। विंबलडन की एक और खास बात है इसकी प्राकृतिक घास की कोर्ट। आज चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग सतहों पर खेली जाती है लेकिन घास का कोर्ट केवल विंबलडन की पहचान है। घास पर गेंद की रफ्तार तेज होती है और उछाल अपेक्षाकृत कम, इसलिए यहां सर्विस, नेट प्ले और तेज रिफ्लेक्स सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। दर्शकों के बीच बैठकर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना भी विंबलडन की सदियों पुरानी परंपरा है। हर साल हजारों किलो स्ट्रॉबेरी और क्रीम दर्शकों के बीच परोसी जाती है। विंबलडन केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि खेल संस्कृति, अनुशासन और परंपरा का उत्सव है। यहाँ हर जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अब बात दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती 4 साल का सपना तोड़ सकती है और एक शानदार गोल पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर सकता है। 48 टीमों के साथ शुरू हुआ ये विश्व कप अब सिर्फ 4 दिग्गजों तक सिमट चुका है, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप इतिहास में फीफा की शीर्ष 4 रैंकिंग वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है। पहला सेमीफाइनल होगा फ्रांस और स्पेन के बीच जबकि दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना। दोनों मुकाबले किसी फाइनल से कम नहीं माने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। दुनिया की नंबर 1 टीम फ्रांस इस विश्व कप में बेहद संतुलित नजर आ रही है। कोच दिदिये देंसा की टीम ने आक्रमण और रक्षा दोनों विभागों में बेहतरीन तालमेल दिखाया है। कप्तान किलियन एम्बापे एक बार फिर अपनी रफ्तार, फिनिशिंग और निर्णायक मौकों पर गोल में बदलने की कला से विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलिसे जैसे खिलाड़ी फ्रांस के आक्रमण को और भी धार देते हैं। अब बात करते हैं स्पेन की। अगर फ्रांस ताकत और गति का नाम है तो स्पेन तकनीक और धैर्य की पहचान है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है उसका टिकी टका फुटबॉल, छोटे छोटे पास, गेंद पर नियंत्रण और विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखना। युवा स्टार लामिन यामाल इस विश्व कप के सबसे बड़े आकर्षण बनकर उभरे हैं जबकि अनुभवी कप्तान अल्बारो मोराटा टीम को नेतृत्व दे रहे हैं। मिडफील्ड में स्पेन का नियंत्रण किसी भी टीम के लिए चुनौती है। अब रुख करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की ओर। ये मुकाबला सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि इतिहास, जुनून और प्रतिद्वंदिता की कहानी है। इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना, इन दोनों देशों के बीच विश्व कप की कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं। डिएगो माराडोना का हेड ऑफ गार्ड गोल हो या 1998 का रोमांचक मैच, हर बार ये मुकाबला इतिहास बना है। इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान हैरी केन अनुभव का बड़ा नाम है लेकिन इस विश्व कप में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जूड बेलिंगहैम ने। बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में 2 गोल कर टीम को जीत दिलाई और इस समय इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की ताकत है उसका मजबूत मिडफील्ड, हवाई गेंदों पर शानदार पकड़ और सेट पीस से गोल कर

की क्षमता। दूसरी ओर है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। पूरी दुनिया की नजरें इस बार फिर लियोनेल मेसी पर है। शायद ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो और वो इसे एक और खिताब के साथ यादगार बनाना चाहेंगे। मेसी सिर्फ गोल नहीं करते बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देते हैं। उनके साथ है जूलियन अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज और एलेक्सिस मैक एलिस्टार जैसे खिलाड़ी अर्जेंटीना को बेहद संतुलित टीम बनाते हैं। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में भी संयम और बड़े मैच का अनुभव। अगर रणनीति की बात करें तो फ्रांस तेज काउंटर अटैक पर भरोसा करता है, स्पेन गेंद पर कब्जा रखकर विरोधी को थकाता है, इंग्लैंड शारीरिक मजबूती और सेट पीस में माहिर है और अर्जेंटीना मेसी की रचनात्मकता के साथ सामूहिक फुटबॉल खेलती है। यही वजह है कि दोनों सेमीफाइनल पूरी तरह अलग अंदाज के मुकाबले होंगे। अब एक दिलचस्प तथ्य, इस बार विश्व कप में कोई भी टीम संयोग से यहां तक नहीं पहुंची है। चारों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर अपनी जगह बनाई है और चारों पहले भी विश्व कप जीत चुकी है। यानी इस बार ट्रॉफी किसी नए देश के पास नहीं जाएगी बल्कि एक पुराना चैंपियन ही फिर से विश्व फुटबॉल का बादशाह बनेगा। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इन दोनों मैचों के विजेता 19 जुलाई को फाइनल में आमने सामने होंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि कौन जीतेगा। सवाल यह भी है, क्या मेसी अपने करियर में एक और विश्व कप फाइनल खेलेंगे? क्या एम्बापे फ्रांस को फिर विश्व विजेता बनाएंगे? क्या यामाल स्पेन के लिए नया इतिहास लिखेंगे या फिर हैरी केन इंग्लैंड का 6 दशक लंबा इंतजार खत्म करेंगे? इन सवालों का जवाब अगले 2 मुकाबलों में मिलेगा। अब जिक्र उस भारतीय महिला टीम की जिसने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक धरती पर अपने जज्बे, अनुशासन और बेहतरीन खेल से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय महिला क्रिकेट इन दिनों एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले की शुरुआत भारत की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना ने शानदार बल्लेबाजी से की। उन्होंने दोनों पारियों में धैर्य और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में उनकी अर्धशतकीय पारी ने भारत को बड़ी बढ़त दिलाने की मजबूत नींव रखी। स्मृति की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ने का धैर्य और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कला। टेस्ट क्रिकेट में यही परिपक्वता बड़े बल्लेबाजों की पहचान होती है। लेकिन इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खोज रही युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला तेज गेंदबाज बनी। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ का शानदार मेल देखने को मिला। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक और बड़ी उपलब्धि रही यास्तिका भाटिया की। दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़कर लॉर्ड्स में महिला टेस्ट इतिहास का पहला शतक बनाने का गौरव हासिल किया। उनकी इस पारी ने भारत की बढ़त को 450 रन से आगे पहुंचा दिया और इंग्लैंड पर जीत का दबाव कई गुना बढ़ा दिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी पूरे मैच में आक्रमण कप्तानी की। गेंदबाजों का प्रभावी इस्तेमाल, सही समय पर फील्ड में बदलाव और लगातार आक्रमण की रणनीति ने इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दिया। अनुभवी स्पिनर स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा ने भी दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा। अगर इस टेस्ट से भारत की सबसे बड़ी सीख देखें तो वो है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार संतुलन। एक और स्मृति मानधना जैसी अनुभवी बल्लेबाज हैं, तो दूसरी ओर क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यही संतुलन भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य और मजबूत बनाता है। अब बात आगे की। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच के बाद भारतीय महिला टीम एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आने वाले ICC टूर्नामेंट की तैयारी के इतिहास से हर मुकाबला बेहद अहम माना जाता है।

0: जता रहा है। टीम चाहेगी टेस्ट की इस शानदार लय को वनडे क्रिकेट में भी बरकरार रखा जाए। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आज बात उस खिलाड़ी की जिसकी मौजूदगी भर से विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति सतर्क हो जाती है, जिसकी रफ्तार, ताकत और गोल करने की क्षमता ने उसे विश्व फुटबॉल के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में शामिल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड की। 24 वर्षीय एर्लिंग हालैंड का जन्म 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के लीड्स शहर में हुआ। उनके पिता अल्फ इगे हालैंड भी पेशेवर फुटबॉलर रहे हैं। बचपन से ही हालैंड की पहचान उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता, तेज रफ्तार और गोल के सामने बेहतरीन फिनिशिंग के लिए होने लगी थी। रेड बुल साल्ज़बर्ग, बोरुसिया डॉर्टमुंड और फिर मैनचेस्टर सिटी तक का उनका सफर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। क्लब फुटबॉल में उन्होंने गोल करने की ऐसी आदत बना ली कि उन्हें दुनिया भर में गोल मशीन कहा जाने लगा। लेकिन इस बार फीफा विश्व कप 2026 में हालैंड ने वो कर दिखाया जिसका नॉर्वे के प्रशंसक वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 28 वर्षों के बाद नॉर्वे ने विश्व कप में वापसी की और इस शानदार अभियान में सबसे बड़े नायक बने एर्लिंग हालैंड। विश्व कप के पहले ही मुकाबले में इराक के खिलाफ हालैंड ने 2 गोल दागकर नॉर्वे को 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद सेनेगल के खिलाफ भी उन्होंने 2 गोल किए और अपनी टीम को नॉकआउट चरण में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनका सबसे यादगार पल आया ब्राजील के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के विरुद्ध हालैंड ने 2 शानदार गोल दागे। खास तौर पर उनका दूसरा गोल शानदार नियंत्रण, ताकत और सटीक फिनिशिंग का बेहतरीन उदाहरण था। इस गोल को फीफा ने राउंड ऑफ 16 का हुंडई गोल ऑफ द राउंड चुना। हालांकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉर्वे का सफर समाप्त हो गया, लेकिन हालैंड का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चाओं में रहा। नॉर्वे भले ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका, लेकिन इस टीम ने दुनिया को यह संदेश जरूर दिया है कि अब विश्व फुटबॉल की नई ताकत बनकर उभर रही है। अब बात करते हैं हालैंड की सबसे बड़ी ताकत की। लगभग 1.95 मीटर लंबे हालैंड अपनी शारीरिक मजबूती, विस्फोटक गति और हवा में शानदार खेल के लिए जाने जाते हैं। बॉक्स के अंदर अपनी पोजीशनिंग इतनी सटीक होती है कि उन्हें एक छोटा सा मौका भी मिल जाए तो वो उसे गोल में बदल देते हैं। उनका बायां पैर बेहद खतरनाक है, लेकिन हेडर और दाएं पैर से भी उतने ही प्रभावी हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई कोच उन्हें मौजूदा दौर का सबसे घातक नंबर 9 स्ट्राइकर मानते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हालैंड गोल करने के बाद अक्सर ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मानना है कि मानसिक शक्ति और एकाग्रता ही बड़े खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। खास खबरों में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत की शूटर नीरू ढाडा ने ट्रैप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरियाणा की नीरू ने फाइनल मुकाबले में जबरदस्त निरंतरता दिखाते हुए 30 में से 27 सटीक निशाने लगाए और शीर्ष स्थान हासिल किया। 26 साल की नीरू वर्ल्ड कप में इंडिविजुअली ट्रैप गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे इस साल एशियन गेम में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्रीड़ा जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार, फिर मिलेंगे खेल जगत की नई खबरों, नए रिकॉर्ड और नई उपलब्धियों के साथ।
1: क्रीड़ा जगत।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युव वाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। प्रस्तुति होंगी गौरव कुमार पांडे की। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा खड़िया भाषा में आदिवासी अखरा का। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 7:45 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता लाइफस्टाइल फॉर सक्सेस के बारे में और वार्ताकार होंगे केसी जैन। प्रस्तुति होंगी प्रभु शरण की। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे का समय होगा न्यूज एट 9 का। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक। 9:45 पर आप सुनेंगे मंथन।

10 बजे का समय होगा, कार्यक्रम गूंजे झारखंड का, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

ग्यारह बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। पहला गीत हमने लिया है रांझना फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है AR रहमान ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म फना से। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया था पलक मुछल ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। अगला गीत आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने। फिल्म है आई।

0: कोठे मनावे चूड़िया। इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में आज मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों का मिलान हुआ। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने वोटरों से सहयोग की अपील की है। राज्य के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व मंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए उनका पार्थिव शरीर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने दारू प्रखंड में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दिव्यांग पेंशन, पीएम आवास, पेयजल, सड़क और बिजली से जुड़े दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराधी नसीरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि अपराधी के पास से 4,04,500 रुपए नगद, 2 मोबाइल, 3 फर्जी सिम और 1 बाइक बरामद की गई है। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटुकदाग गांव में आज जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। घायल बुजुर्ग के पेट से मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर गोली निकाल दी है। पुलिस फरार आरोपी और उसके भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण पर के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध के कुछ गाने। 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी सर्दियों के लिए टमाटर एवं बैंगन की खेती। संथाली लोकगीत होगा राम टुड्डू और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता सुनिए श्री विधि से धान की खेती। भेंटवार्ताकार होंगे अनूप कुमार हेमब्रम। नागपुरी लोकगीत का आनंद लीजिएगा रूना देवी और साथियों के स्वर में। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए संथाली कार्यक्रम। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। श्रोताओं, आज आप सुनते हैं एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। पहला गाना हमने लिया है फिल्म आह से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म आह का ये नगमा, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। और आइए सुनते हैं फिल्म जाने अनजाने का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है।

श्रोता सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आज आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। अगला गीत है फिल्म बरसात से, गायक लकार है लता मंगेशकर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आई सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का गाना आवाजें लता मंगेशकर की।

मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए इस फिल्म धरती के इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। श्रोता सुन रहे थे एक ही संगीतकार शंकर जयकिशन के।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ᱪᱟᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: और जलवायु। यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं एपीओ का डायरेक्टर हूँ। मेरा एपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
9: मानधन योजना
10: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जासग्या को नादो उम्मीद बेपटा चपगर बायुम लिया चपगर तनकिंग अनुप कुमार हेम्ब्रम मुंडो ठाकुर छंद मोरमुत की
4: जैसी वो यहाँ को जाओगे ना किसान वाणी कार्यक्रम रे अड़ी लेकर ना चास बास रे कबून गपन मरा और इन्हें साउंड साउंड कबून गपन मरा उकाल कते अब रोजगार कबून जाम दारे उकाल कते अब चास बेसो को अमेंते नवा को बन गपन मरा और चासी बढ़ो ही सला हूँ और इन साउंड साउंड बन गपन मरा और चासी को जहाँ मना से को लहा करना उनको सला हम गपन मरा तो चासी वो यहाँ को तेहें अड़ी लेकर गपन मरा साउंड साउंड के चास पास रहा चलकर तब उन कुरुमुटु दारे आ तेहें अनुप कुमार हेमरम तिकिन नसे ना मित बार पोत किन ले मरांगा
5: नवा नित समय ना नय सितुम माने हुडू चास कमा बो चबा के नवा को लगे त नय ना जहां लेकर दलहन तेलहन को में साग सब्जी को बस चास मा साग सब्जी को बढ़ के करे और वंकन जहां गडा आड़े मुडु आहार काड़े करे बो चास मा ओना कोते अब अतिरिक्त इनकम तब हुई दड़े नवा नित सीजन न सेटेरकना दो जहां लेकर दल रे दो मूंग दल और सुनम जिनिस सूरजमुखी और नवा जहां लेकर सब्जी कुन मेन के सब्जी करे दो लत्तर वाला नणिया जहाँ लेकर कद्दू करेला कोहड़ा खीर झिंगा इमान को वो चास दड़े
6: अच्छा अच्छा जहाँ बिन ले के आ अच्छा करेला रे और जहाँ लेकर होतो बन चास हाँ उन्हा रे ना रान मुर्गन जहाँ लेकर सकाम ससंग आ तीजू कटे को पिपड़ियाँ को उड़ आ उन्हा ना रान मुर्गन कटे ले या ले नहीं
5: असल नवा सकाम को ससंग रिया लगी दो मेन कारण दो काना खाद को जहां माने यूरिया डीएपी पोटास इमान मो लगा होया ओना जो तो बैलेंस मात्रा रे बाबो लगा होया जहां लेका न बोरेक्स मिटी खाद बिना बोरेक्स हो खाद करना ओना पाउडर ओना हो लगाओ दरकार करना आर मेन दो नवा ससंग रिया कारण दो नई यूरिया नाइट्रोजन कमी ते हुआ आदो ओना दो नवा डीएपी को पोटास को आर बोरेक्स को दो एहोब रे ओना बो रोहय माड़ रेगे थाला जहाँ बो बना वे बो लगा और यूरिया दो बाद रे उना कुसियो कुसियो बीच ना बो कुसियो दो बीच बीच रे उन जो यूरिया कम कम मात्रा रे लगा ये को दलहन फसल को एम हटिंग और उना को अड़ी किसान को लाभ को हत को रोहे को नवा योजना को दो अब प्रखंड कृषि पदाधिकारी ब्लॉक लेवल रे मिले और आत्मा हो जहाँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी मे उनिया हो ब्लॉक लेवल रे एटिक मेना ओंडे बो जाम दरे आर नितो सरकार पस्टा खन मिटंग सिंगल विंडो सेंटर खुले कना ना
6: अच्छा
5: सिंगल विंडो सेंटर तरा तरा ब्लॉक करे खुले कना तरा कर और ही खुला लेकिन जो तो ब्लॉक करना खुला ओना सिंगल विंडो सेंटर दो जो तो लेकना सूचना बो जाम दरे जो तो विभाग रे माने कृषि से संबंधित जहां लेका ये भूमि संरक्षण रिया सहकारिता विभाग रिया मत्स्य पालन वाला रिया पशु पालन रिया नोवा जत्तो एमन सिंगल विंडो सेंटर
6: रे खेंगे जत्तो आ
5: जत्तो ओ नाम रे हय एकना मिटी एनएफएसएम जहां कमिना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ओना तहते ओना प्रत्यक्षण लगे किसान को माने बेस इत एमा को काना माने तारा दो 50% रे तहे ना तारा दो फ्री होता है ना आ ओना इत बदल लेखान चे उपजाव माने जहां उत्पादन तबो अडी ढेर ऑटोमेटिक बढ़ा अब ओना मारे इत के रोय रोय रोय त ओना उत्पादन क्षमता घटा कना अब ओना हिसाब त ओना नवा तो किसान को चेत को लगे ओना नवा इत बेस इत ओना को एमा को कना हटिंग एको तो प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड मिटी चला कना नवा योजना हो अडी अहम योजना कना नवा योजना ते सोयल हेल्थ कार्ड तो माने मिट्टी रिया ओना स्वास्थ्य ना जांच कते लई होकना माने अबो दो माने मिट्टी हासा मा कोंदा के बाय ले छे चेत मेना चेत बनुआ एका ओना हिसाब ते नितो जान लेका हड़ मयांग बो जांचो आछे ओना हिसाब ते हासा हो जांच अबो आर जांच चला कना सरकार जो तो किसान को बद रिया जांच रिया कोशिश या आर ओना जांच लेन खान चेत चिका जे ओंडे चेत मेना आ यूरिया कम गया चे माने पोटास कम गया चे नाइट्रोजन कम गया चे फास्फेट ढेर गया ओना हिसाब ते ओना कार्ड बिना आर कार्ड बिना कते ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱞᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱪᱤᱡᱽ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱪᱤᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
6: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
5: ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱸᱪ ᱛᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱪᱚᱠᱨᱫᱟᱨᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱸᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱴ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱠᱤᱴ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱡᱟᱸᱪ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
6: ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ
5: ᱦᱳᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱟᱜ
6: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
5: ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱠᱚ
6: ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ
5: ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱛᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱚᱠᱷᱚᱸᱰ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱯᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢᱩᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱞᱚᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱞᱚᱴ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱞᱚᱴ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱤᱞᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱩᱢᱩᱞ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱢᱩᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱞᱚᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ 6 ᱤᱧᱪ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ 6 ᱤᱧᱪ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱪᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱚᱱᱟ 1 ᱥᱮ 1.5 ᱤᱧᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚ ᱞᱟᱦᱮᱨ ᱚᱰᱚᱠᱟ ᱪᱷᱤᱞᱟᱹ ᱚᱰᱚᱠᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ 5-6 ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱠᱤᱞᱳ ᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱳᱡᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱠᱥ ᱢᱤᱠᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱫᱷᱟ ᱠᱤᱞᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱞᱚᱴ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱨᱤᱰ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ 10 ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱨᱤᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ 10 ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱛ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ 2-3 ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 2.5 ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱨᱤᱰ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
7: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱡᱚᱦᱟᱨ
8: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱ ᱚᱱᱩᱯ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱣᱟᱲᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱠᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱮᱭᱟ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱛᱩᱱᱰᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱩᱲᱤᱞ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱮᱦᱮᱛᱮ
8: ᱟᱨ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 GI टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देश भर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। गुमला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रांची टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के क्लर्क रंजित कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी के नेतृत्व में आई टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रांची ले गई है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के एक जवान की मौत हो गई जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। चलकुशा थाने की पुलिस टीम मैथन में छापेमारी कर सरकारी वाहन से वापस लौट रही थी तभी NH-19 पर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। पलामू के चैनपुर में आज प्रमंडल स्तरीय 65वीं सुबर्तो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: ᱦᱤᱝᱥᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱟᱦᱮ ᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟᱣ ᱵᱚᱪᱚ ᱠᱮ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱭ ᱫᱤᱥᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱣ हिंसा से सनी राहें न अपनाओ बच्चों के भविष्य
2: मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है
3: ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
4: ᱢᱚᱨ ᱱᱟᱢ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞᱚ ᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱜᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮᱨᱟ ᱟᱲᱠᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱝᱜᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱛᱚ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱠᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱦᱮ ᱞᱚᱜ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱩ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮᱱᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱯᱟᱨᱞᱤ ᱚᱦᱮ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱢᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱩᱢᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱭ ᱦᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨ
5: ᱱᱟᱢ ᱦᱮ ᱨᱟᱱᱵᱟᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱜᱟᱸ ᱵᱟᱨᱮ ᱦᱚᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱟᱭᱱᱮ ᱟᱢᱨᱮ ᱜᱚᱨᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱫᱩᱠ ᱠᱮ ᱵᱟᱛ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱡᱟ ᱦᱮ
6: ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱟᱹᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱵᱷᱩᱨᱩᱯᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱫᱩᱠᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱮᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱮᱨᱮ ᱚᱣᱟ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱠᱟ
7: ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱲᱟ

आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ज पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए की बैठक संपन्न। सीईओ ने कहा, एसआईआर में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे राज्य का विकास तेज होगा। राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों को मिलान हुआ। इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एएसडीडी सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। श्री कुमार ने बताया कि आगामी 22 जुलाई को होने वाली अंतिम बैठक में एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देकर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
1: 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उनके बारे में चर्चा होगी, उनका नाम रात फॉल में नहीं आएगी। अतः एक्सेंट है, शिफ्टेड है, बेट डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका भी नाम रात फॉल में नहीं जाएगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया जाएगी।
0: इस बीच रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि प्रपत्र वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। उन्होंने वोटरों से बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है।
2: लोकतंत्र में भागीदारी होने के लिए निश्चित रूप से मतदाता को इसमें आगे बढ़ चढ़कर बीएलओ को मदद करें और अपना एक गणना प्रपत्र भर के दे और एक अपने पास रखे ताकि रेफरेंस के लिए बाद में मदद। लास्ट डेट के लिए मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन का, जिला निर्वाचन कार्यालय का, वेट न करें।
0: उधर गुमला में सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने 6 बूथों का औचक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने और हर पात्र नागरिक को जोड़ने का निर्देश दिया। खूंटी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदान केंद्रों पर लगाए गए शिविरों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग केंद्रों पर पहुंचकर फोटोयुक्त प्रपत्रों का सत्यापन कराते देखे गए। बिना मैपिंग वाले वोटरों का अन्य राज्यों की सूची से मिलान किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री दीपक बिरुवा और विधायक कल्पना सोरेन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया।
3: उम्र उन्होंने खुद को समाज के लिए और आम जनों के लिए हमारे साथ विधानसभा में बतौर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। निश्चित रूप से आज जो वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी अनुभव, उनका जो समाज के प्रति दिया हुआ संदेश है, वो हमारे बीच रहेगा।
0: इसके बाद उनका पार्थिव शरीर प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया, जहाँ मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है।
4: जेपीएससी में जो बरती गई अनियमितता उसके विरोध में हम सभी आज जेपीएससी कार्यालय घेरने आए हैं। जो कटअप मार्च जारी नहीं किया गया, लगातार छात्र लोग अपनी बातों को रखने का काम जेपीएससी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के, फिर भी जेपीएससी गहरी निंद्रा में सोई हुई है। को सड़क से लेकर सदन तक का पुरजोर विरोध करेंगे।
0: रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धनबाद में मानसून के दौरान कोयले के निर्बाध उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए BCCL ने तैयारियां तेज कर दी हैं। CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने बस्ता कोला विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने खदानों में जल जमाव रोकने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
5: हम सभी जानते हैं कि देश में कोयले की बहुत ही मांग है, थर्मल पावर को कोयले की बहुत आवश्यकता है, तो इस मानसून पीरियड में भी सुरक्षा सेफ्टी के साथ कोयले का निर्गम डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन आदि होता रहे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसी सारे विषयों पर मीटिंग ली गई। सबने विश्वास दिलाया कि बस्ता कोयला का जो टारगेट है 35.5 लाख टन, उससे भी अधिक ये बढ़कर करेंगे।
0: हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देशभर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं।
6: वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मोदी जी, क्योंकि उनको देख के हमें ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है। एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि वुमेन को, बच्चों को या जिनको जरूरत है उनको हम काम देते हैं। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वही हमारा भी नारा है। एंड कोशिश करेंगे कि और बढ़ाएंगे और उनसे प्रभावित होकर और अच्छा काम करें।
0: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक SP राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र रांची ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह समेत कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओमान के मस्कट में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीमों में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। महिला टीम में संदीपा, पुष्पा, श्रुति, नीलम और खिल्ली कुमारी को, जबकि पुरुष टीम में आशीष तनीपूर्ति को जगह मिली है। हॉकी झारखंड ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 GI टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और BLO BLA की बैठक संपन्न। CEO ने कहा, SIR में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथयात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में SIR का काम लगातार जारी है। इसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। उन्हें SIR प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने बताया कि
2: झारखंड में जो है हम लोगों का SIR स्पेशल इंटेंसिव कमीशन 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक हमारे सारे BLOs जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता है वो उसमें हस्ताक्षर करके वापस करेंगे और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम आएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन हूं कि अपना अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के BLO के माध्यम से उसमें वापस लौटा।
1: इधर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने SIR कार्यक्रम के तहत BLO के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र भरकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र भरने तथा SIR की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: लोहरदगा के तमाम जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि मतदाता गहन परीक्षण एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से सारे लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना नाम जरूर से अंकित कराएं, क्योंकि ये आपकी पहचान के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसपे इसकी आवश्यकता है। तो आप इनका सहयोग कर आपके BLO आपके घर तक जाएंगे और अगर कोई कमी हो तो निश्चित उनसे संपर्क करें और अधिक से अधिक लोगों को इसपे इनरोल कराने का आप लोग सारे लोग प्रयास करें।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिला के किस्को एवं पेसरार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी जनजातीय व्यक्ति के साथ उत्पीड़न भेदभाव या सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। लोहरदगा जिला में जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में 17 जुलाई से नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर जिला फुटबॉल संघ के अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि फुटबॉल लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को नशा से मुक्ति और रक्तदान के लिए जागरूक किया जाएगा। लोहरदगा जिला के ओयना टोंगरी में मिले 100 की गुत्थी मात्र चंद घंटे में ही पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 100 के अन्य हिस्से एवं हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: जो मृतक है उसके 2 मित्र थे जिनका नाम अरमान और सहबाज था। वो तीनों दिनांक 4 तारीख को सहबाज के घर में किसी प्रकार का पार्टी कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:15 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद है आप सबों की सुनना चाहा है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और शुभम गोप। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हीरम हेमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बो, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊ भाई, साइद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। गोल्डन रेडियो लिस्नर क्लब राज पैलेश मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दूतनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी। रविदास मंदिर हकीकतपुरा मऊ UP से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जवली अंसारी और फर्जवली अंसारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सुनैना। इस फिल्म का गाना आवाज़ है यशुदास की।

अगली पसंद है चांडिल ग्राम हरुड़ी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु। बड़ा नेमड़ी चाईवासा से तुलसी पथिक मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा। ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, वनमाली बेसरा, अन्नु, सिद्धू कुमारी और पूजा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम भगत, श्वेता भगत, ईशु, ताशु तथा भगत परिवार। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। तुरी टोला चाईवासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, दौलत बाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

श्रोता सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा है। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीश। खसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक। सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, सफी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, काशिफ मीना और हासिम मीना। महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमानती महाली, यशोदा महाली, शांति महाली। दुर्गाई सेलू जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, सी आर कुलकर्णी। इसी गीत को सुनना चाहे वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी। बड़े बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गाना आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की है।

अगली पसंद आप सबों की है ग्राम जोयो कुड़मा से शुक्रा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाईसाई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान, बड़ा कुड़मा से सुदर्शन महाली, चिगड़ू महतो, छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल और ऋतिक, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़बी, रीना तड़बी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़बी, परू मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारीकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़बी, आरिश, अरसलान, यूनुस तड़बी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक तड़बी, परवेज तड़बी, बिटिया रोजमिन तड़बी, तैमूर तड़बी, समस्त तड़बी परिवार, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, देवी अनिष्का और तन्मय गजभिये, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा, फरमाइश करते हैं चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद, पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार झजोरिया, गीता रानी झजोरिया, गगनदीप झजोरिया, बेबी आरजू झजोरिया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, बड़े बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबीहा, बड़े बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिले नादान, इस फिल्म का नगमा आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अगली पसंद आप सबों की है, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। गांव कुईड़ा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा। हजारीबाग गोला रोड सेठ मोहल्ला से अन्नपूर्णा देवी, सुधा देवी, प्रिया देवी, आशा देवी, उदय जायसवाल, हन्नू, ऊर्जा, उन्नति, उत्कर्ष, अंशु जायसवाल। खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। बेड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम नूरजहाँ, वलीउल्ला नूरजहाँ। राजनंदगांव से याकूब आशमा, यूसुफ आशमा, इमरान आशमा, इरफान आशमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी। अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म असली नकली का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अगली पसंद आप सबों की है मोहल्डिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नु, तनु, डिस्को महतो एवं भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अंसुयस नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान, महादेव घाट, अमलेश्वर, श्रीडोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजिला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, भाटपारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, खरसवा गांव दलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, गीता सोए, सिनेमाई सोए, सरिता सोए, तनुजा सोए, सारिका द्वारिका सोए, कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतंग बीरक, मीका बीरक, रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से

विश्वनाथ साहू लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी दतरेगी से भागवत वर्मा आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म नाचे नागिन गली गली। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं साधना सरगम और नितिन मुकेश की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे ही अगला गीत। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत बैंकुरा, सुलोचना पान, हेमंत पात्र, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, कल्पना कुमारी, रूपाली कुमारी, झीपी कुमारी, जयमणि, जयंती, अल्पना, नवीन। कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल मुन्ना और शनि। ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। जोजो कुर्मा से मनोज गगराई, बसंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई। बरियातू रांची से नीतीश, मेघा, कांछा और अरब। उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य। शिवाजी चौक राजिम, छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीला, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार। खरसमा बड़ा बाम्बो से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो एवं समस्त परिवार के सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गाना आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गोवंकर राही, सरिता गोवंकर, प्रिंस एकांश गोवंकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोवंकर, प्रणीता गोवंकर, आकार हार्ट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गोवंकर, श्वेता सुमित गोवंकर, कुमारी धोनी गोवंकर पदी और लाडला टुक टुक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजकुमार का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की है।

अगली फरमाइश है छत्तीसगढ़ भाटपारा दत्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाबेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सुहाग का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आसफ भोसले की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अर्पण का ये नगमा।

और ये सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप सुनीता देवी उमा कुमारी गीता देवी रीता देवी अमित गोप अंकित गोप अभिषेक गोप आशीष गोप शुभम गोप सुमित गोप विकी गोप सरस्वती देवी विनोद गोप राजू गोप राजन गोप माहिर गोप और आराध्या कुमारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर की है। गीत लिखा है संतोष आनंद ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अगली फरमाइश है सदाबहार टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजपूत का ये नगमा। आवाज़ें किशोर कुमार की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क भाव में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया, जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
6: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों हैं।
7: 61 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chased a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
9: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
8: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
9: We had issued a statement post-summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
8: Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation.
9: Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, blocking essential supplies, enforcing internet blackouts, and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan fully accountable to these egregious abuses and mistreats.
8: The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey.
10: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and tables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
8: More from our correspondent.
2: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DTC will open up significant

0: 3 कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सास में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नजर वो मगरबी वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार सुरक्षित और आजाद नौपरी इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है और ये नौपरिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मुंबासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे जिनमें 30 भारतीय मल्लाह भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है आज सवेरे हमला हुआ तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्ते नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामिया इक्तिसादी तिजारती मुआहदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामिया इक्तिसादी एक फैसला कुन संगे मील करार दिया कि ये दो बड़ी मीशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इकतसादी शराकतदारी कायम करेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तिजारती मुआहदे का नफाज भारत के आलमी सतह पर मरबूत लचकदार और मुसाबकती मीशत सफर में एक अहम कदम है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस मुआहदे को अवाम पर मरकूज मुआहदे के तौर पर CETA और DCC के एक साथ निफाज से भारतीय बरामदात के लिए अहम इम्कानात पैदा होंगे। भारतीय बरामदकारों को मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के महसूल मुकम्मल तौर पर खत्म होने से फायदा होगा। डिब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी अशिया पर 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग साजो सामान और मोटर गाड़ियों के तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कान पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए

0: ट्रांसपोर्ट की जाएगी। में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया, जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग ट्रांसपोर्ट आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णो ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
1: में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई एश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ बेंच ने रियासत को फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक पहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है, जब तक के मामले का तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया। भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उनवान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत यह इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट ऐलामिये को मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और नवा ऐलामिये का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मस्नूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी प्रोग्रामों को नुमाया किया जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को 3 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे और एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को

कर्नाटक में बीजेपी का एक अहम सुतून करार दिया, जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, जन आसियत का इजहार किया। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आजाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये बातचीत तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफेन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरखा पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसीतर इत्तेफाक हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा IMD ने कहा है कि आइंदा दो रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से दो के सदर व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस की सालाना बेस्टिल डे तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं, ने कहा कि यूक्रेन पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास के डेलास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। यह मैच जीतकर फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब स्पेन साल 2010 में ट्रॉफी और कोशिश करेगा। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबिस्टन में खेले जा रहे 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 259 रन का निशाना रखा है। जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 22 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 258 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 76 रन जबकि लियाम डोसन ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। शुभमन गिल की क्यादत वाली भारतीय टीम को आजमूदाकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से मजीद तकवीयत मिलेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत ने आबनाए हुरमुस के रास्ते के देरी न हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव
2: किया है? लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई हैं उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेकर आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाई ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेके देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बांटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो, तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
2: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कोई स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि तो कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कई जगह और चीजें बन रही है। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है, तो आगे बात बने। अभी तक पेपर में ही कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है। अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके लिए हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई है, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेंगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार बर्थ नंबर सब दिखता है, ऐसे इसमें भी दिखेगा।
1: अरुणेंद्र जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है, तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो नई व्यवस्था है इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
2: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है, उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए, और जहां से शुरू होती है कहानी, वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको घटा के कंटेनर में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो, और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है फ्लाई ऐश, तो एक बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है। जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
1: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश साथ साथ, तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
2: कंटेनराइजेशन जहाँ जहाँ आया है वहाँ सफलता मिली है, और एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की, रेलवे ने अपनी सोच का बताया है और जिसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट या सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 140x145 का होता है, तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब तक है तब कर सकता है, मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो। तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है, कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है, कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उसमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशिएंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, इससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स सब में आपको फायदा दिखेगा।
1: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है, तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
2: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTO आए थे इंटरनल प्लेयर्स, अभी दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का जिसमें कि प्रोसीजर तकलीफ है, जो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता है बहुत ज्यादा नियम है और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है, ये सब चीज उन्होंने हटा दी और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है तो वो सब चीजें आपको एक बार वंस यू आर इन आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं। तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल गया।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था है इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है, ये जो बदलाव है इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि ये होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा?
2: रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है, यदि आप चेयर कार में जाएं तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आप बिल्कुल दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करते हैं उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे, तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग आप भाग जाएंगे और जब तक आप उसको अच्छी तरह बिल्कुल जानते ना हो, लेकिन अब जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को और तुरंत पता चल जाएगा और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेन रिजर्वेशन के माध्यम से 3 AC का किराया कितना है आप देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसलिए ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करें।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान लगभग 4-5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती है उनके नुकसान की बात कही जाती है, अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
2: देखिए अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती है, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दोबारा सेल लगा लेते हैं और फिर कंटेनर का ध्यान दिया जाएगा कितने कंटेनर है कहाँ उतरे फिर उसको वापस लाना है, तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं कि जो कंटेनर से सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के थेफ्ट के बहुत कम है और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है कंटेनर कहाँ है आपका, एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे,
1: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा ताकि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल,
2: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो।
1: जी
2: और ये सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे जो लागत है उसकी कमी हो और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच जो पावन रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं
1: जी जी
2: ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर
1: जी। अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं, में जो काम करते हैं खासतौर पर प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी हैं, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है, तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
2: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको मालूम है लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रहे हैं लोगों को

0: को भर्ती करना चाहती है तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होता दिखता है। जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है, और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं। उनके पास मेरे पास लाइसेंस है, और एक ऑथराइज्ड जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है जिसमें इन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है उसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है, और ये मजबूर किया गया है कि अपने को ऐसे ही लोगों इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो, और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
1: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए। तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?
0: तीन अभी देखिए शुरुआत हुई है, और आप देखा होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है, ये चीज जो है रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नीति का सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है, और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है, एक
1: जी
0: बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निजी भागीदारी, हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
0: देखिए 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी।
1: जी
0: भारतीय वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी, और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। तो
1: जी
0: ये कोई नहीं चाहता कि टिकट इस टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में माध्यम से, कंफर्मेशन हर एक को चाहिए होता है, और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत
1: जी
0: जबरदस्त काम हो रहा है, काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी।
1: अरुण जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, समय है गज़लों का, तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अगला गजल है चित्रा सिंह की ही आवाज में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह द्वारा गाए इस गजल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। सुरों के रंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। पहला गीत है फिल्म अनोखी रात, गायक कलाकार है मोहम्मद रफी।

और आइए सुनते हैं फिल्म बेटी बेटे का ये नगमा। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आपने सुना फिल्म मधुमती का ये गाना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर, गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म आप तो ऐसे ना थे। गायक कलाकार है हेमलता।

इस गीत के साथ ही श्रोतामार आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, Bharat Text is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Text. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textiles sector. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities allegedly owned and controlled by him. In cricket, chasing a target of 259 runs set by England, India were 239 for 4 in 42 overs in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, electing to bat first, England were all out for 258 runs in 47.5 overs. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 101.7 MHz पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अभी संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।